ते जे न पानी न मुंबुने में न मान भी काउने न संगुनु ते जे होई दो हूँ न रंगले लोई भी ना सिंया आतंग आलम तुम्हाई के ही दे दी काउने

सिंगसांग ना लुहुप ओइरीबी रितु तरुप ना थगलीबी लबुक लमांग वातबी असंग बिजोल ना लेतिंगबी मणिपुर सना लेबा खुरुमजरी इमा नखुया थंबालदा।

行老那恩行，压力给那么大，行老行那恩行，压力给那么大，弄不清开混了不大。

0: व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
2: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
3: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
2: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
4: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
2: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
5: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे।

0: मंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
2: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एक मुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12

0: पाकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में बी सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी तो मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks including regional rural banks to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Roshibina Devi bagged silver medal in Wushu at Asian Games in Japan. Satnam Singh and Salman Khan secure bronze in rowing men's double sculls. And India beat England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand.

0: होइन न, लिक्सैन कान्गेतहरु कन्द्रिप दो मदु नंग नराय भ खरम को
1: नपान हाइरि सितारे दना वा मतने फजान हाइन बताना बा मत यादे महाभार के बिम हाइ दुनो ओलक प्रखंग दिने नुमि चुपगी लिसै यम पाइरगा फुगेगा थोंगेगा सही मता सिगा
0: सही मता आंसि दना त इजाद ब वा हाइर दिने फुपता बा खंगरा
2: इमान पामबिरी सिबु करिनो इमा
1: इमो बेमा कैसु लैब वाबुदि नथेदा पैसासु कयामनाबुदि जंगनी गेने इसानो पाने इंजीनियर नि इमोसु कॉलेज की ओजानी
3: अदु इमागिदमत अखोय लैरी इमाय अपाम हेक्ता हाइबी
1: हो अदु निदना इसाजिना अदुमना हायराबदि कयाम नुगाइरगे से सिनी दै बोचोबा लैमा
2: इमा
1: नंगसु ताउ कुमसि इंगेनगि निनी पानब कांग जौ कदोरे दना
3: अदु इमा कांग मनद कै जौगे हारिनि इमा
2: इमासु कांगि खुबाय से यौबिगे हाइब्रो यौबियो नमौ लोइन सिनजगे इमागि सैतम बिनाबा आफाबो ओजासु थिरुगे
0: गाकों गाको इमो बेमा से आमतंगाय खो नमाने इसै छकपा इसै योजा थिब लाइरि को से नमान करी पामी बैदो नमागि वादो मदु मखांग
1: मोइबा सीयोरदिने मोइबा मक्त याउबिरगिनु इसागै मगोदा आइना थोपा दं नंगनजरगे
0: होय होय होय होय या या या अदुबने आइ नोय वारि सिताबदि याइको हा हाइनारो हाइनारो हाइनारो
1: बेमा इमा इमान हाइदौरिसे मणिपुर द लैरगा खुबा इसै याउगे हाइबन नति हाइबा
2: इमा
1: पुरी द लैबने जगन्नाथ खेत्रगी कांगसिंग मदु इमा याउनिङे हाइबा इबुङोगि मांगदने सगोय अमुक त थोनिङे इमा इमागि अपामबसे इबो सोबो नोय नि ना मुक त दि थुङहलु हाइबा
3: इमा मधुबु खंग देने नतै ग चादो मान दे
0: ए गांगनो गांगनो गांगनो ना चा सिंग या न ब गांगनो ऐ सुम तागे गो
1: इबो सोबा नंग जो नापा दोंग न लिक्सिन ब सेन बुथोकनिंग द भौर ब्रो ना
3: इमा अदु वा न ते ब
1: अदु दि करी गिनो हा अदु दि करी गिनो हाइबा ऐ न दि इसा इमो ऑफिसर नि मिया ममांग द लेने गे दना खाली बसी दि नोइन थुंगन मंगम लरो सि नत्रो नोइ सेन पोथोमिंग द्रब नत्रा बा फै फै फै समा गायथो गने आइ पुरी सके आइ पुरी सके
2: बा खोइन ने सेल पोथोलिंग द बगी वानति इमा
1: हाय मधु नत्र दि करी गिनो हा मधु नत्र दि करी गिनो बा हायुने हायुने नोइन सेन पामु ब नत्र ग दि करी गिनो हायबा आइबु सही खुदिंग पुरी द कांग याव बसत क्रे न नुई द हाय ग्रब रायबा कुमसी सी दबु पुमिंग या पामबा मल्लई बदगी हायरी बने बाई
0: ओ नंगी सिदिए पुरी गी कांग सिंग ब येंग बन त बा तो पा अनिंग बा पाम बम सिले
1: आ ले ले ले याम ले ग्रजानी मोय बाबा इबु होगी फम द संगज ग दो बा हाय जग द बा याम ले ग्रजानी जगत की मरोल हु उरी ब इबु हो दो महाक तन आइगी अपाम ब अनिंग ब थुमन ग दौरी बने
2: इमा नमौने यामना खंजब उजब बुदि नते पुरी गी कांग सिंग ब हाइबसे आइखोय स्वाइगी मि खरना थौरी पाइरग सिंग न बसिगुम बनते मि लाक लाक दिन ब कुमहिने इमा
3: माने हकुम दि मि लाक दरा हेन दुम कांग सिंग ब याउगी न हाइनि लाइसंग दगी किलोमीटर कयाम सान लंबी गे कोलास मचे अमत उदन मि मि नक तने
2: माने
3: कुमसिना मुक जु हेन ब जु यारिम अदम तम सि ददि पुरी द नुसा छु या लोंग सारम दो पोन
0: अदुनि ने अदु याम ब मिया मरक तुदा खोंभम भव सुम न लेफम फंगलोय द बदुदा मामा नंग न सग द रुब जगो हि ब करि नोय मे
2: मफम द दने तिलिब मियाम दो लोइन म खंग न सान ब नति इमा अदुना करिगुम मरम अमदगि निगाय संदान रक पद लंगम फंगम द ब इरांग थोलक तुना मिसि मिना थोक पसु या
3: हौकि ब सहि जिंग द सुने तसेंग तसेना दुम मिसि मिना से कयाम थोक रपो निदा कांग सिंहभमदा मी याम तिनमन घिदना नुसित नुसा मरा काइन फंगदबदगि शोर फुनबा वानधबा अददगि मिया मरता नेखाय नबन सिंहब खुदों थिबा काया कयानि चाग्रब कानि नाते इचारदि कांग इचकान तकपबो यारिम
1: ओ यारे यारे यारे नुइने मंगांग ननि नुइ कनाम ता हिं तुमुरा नुको नोय
0: से थारे महाति नशा सिंहना सुख मयेक सिंह हायर फावदे हेक लौदिर को नंगसे अदुक याम ब मिया मरक तुद करगुम ब शॉर्ट पेक हाय ब मेक थोलक पद मिया दो पाखत न दोरिम नि क्वेश्चन जे न दोरिम नि
3: माने
0: मतम दुद कनाना करी तौरि हाय ब हन नि यंग न ब संग न पो न ति हाय ब ने खाय न ब सिब संग ब मवा सा नि हाय न ने दोरिम नि मिया
3: अदु माइ सिय न ब इमा गा खुग काइ न रे अदु कमाइ तौ दु न ब इमा
0: अदुनि एखोय छ्वागुम न न म फम दुगी खोलक लैरक

आकाशवाणी इम्फाल हौजी दिल्लीदेखि रिले ताबिरसे इकाइ खुम्नजरिबा भारतकी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीना सही कुनमङा चुक्न मियाउँगे सेवा तरोपगी अखनव थौरम।

ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के सातवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा स्वच्छता से।

0: ये हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राव जी। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौर जी। रोशन जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल गुजरात के बारे में। तो अक्षय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2007-08 में गुजरात ने स्वच्छता को सिर्फ योजना नहीं, एक अभियान बनाया। इस निर्मल गुजरात में ऐसा क्या था जो बाद में स्वच्छ भारत का आधार बना?
1: आप जिस बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो दुनिया की सामने, भारत से तो शुरुआत हुआ ही, गुजरात से बल्कि शुरुआत हुआ। ये एक नया गवर्नेंस मॉडल का एक देखने लायक चीज है, क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तरह तरह तरीके से सरकार चलाती हैं। मंत्रियां आते हैं, मुख्यमंत्रियां आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, और सबका पॉलिसी होता है, प्रोग्राम्स होता है। लेकिन ये एक अनोखा तरीके की काम करने की तरीका जो कि गुजरात से शुरू हुआ 25 साल पहले, और उसमें पूरा स्केल अप जिसको बोलते हैं, पैन इंडिया बोलते हैं, एक मौका मिला जो कि यहाँ भी 12 साल से उस तरह का जो प्रक्रिया है, वो जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था उसको लाया गया। और आपने स्वच्छता की जिक्र किया, वहां जो मेन कैरेक्टर उसका था निर्मल गुजरात का, वो था कि कम्युनिटी को मिलाया जाए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है या सरकार के कार्यक्रम है नहीं, ठीक है, सरकार अगुवाई करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिशन बनाएगा, पैसा कुछ हो सकता है लगाएगा, लेकिन लोग इसको सम्मान के हिसाब से लें। विलेज कम्युनिटी हो, अर्बन कम्युनिटी हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम सभा हो, ये सब ऐसे मिलकर जुड़े कि ये उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उनकी बच्चों की हेल्थ के सवाल है, उनकी महिलाओं की इज्जत के सवाल है, सिक्योरिटी के सवाल है, पूरा समुदाय की हेल्थ के सवाल है। और स्वच्छता जो सामने आ जाकर जान नहीं ले लेता है, उसका बहुत दूरगामी जो परिणति होते हैं, और वो पता लगा है जब ये स्वच्छ भारत मिशन निर्मल गुजरात से शुरू होके। स्वच्छ भारत मिशन का स्केल ही कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग 6.5 लाख, गुजरात तो एक स्टेट हुआ, वहां एक प्रयोग हुआ, लेकिन उसको जब देश की जमीन पर लाया गया, पूरा 6.5 लाख उसमें गांव है, करीब 5,000 शहर है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, वो एक कुछ अलग से था। लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल के एक और भी एक रूप है कि ये स्केल में बिलीव करता है। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पायलट में करेंगे, फिर 15 साल में करेंगे, फिर 25 साल में करेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ एक सनसेट क्लस डाला गया। 2014 में जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, चाहे निर्मल गुजरात के प्रयोग से हो, सीकर और भी बहुत सारे प्रयोग है, निर्मल गुजरात उसमें जरूर मुख्य है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने, मोदी साहब। तो वो इस मिजाज को लेकर आए कि हमें स्केल पर करना है, पूरे शहर में करना है, पूरे गांव में करना है, पूरे देश को स्वच्छ करना है। तो 12 करोड़ टॉयलेट बने, उसमें एक्सेस और यूसेज, ये दोनों मूल मुद्दे थे, और गांव के मुद्दे ज्यादातर थे। ऐसे नहीं कि शहर में समस्या नहीं था, शहर की समस्या में अभी जूझ रहे हैं, सेकेंड फेज में, वेस्ट मैनेजमेंट में, कचरा का प्रबंधन में। लेकिन जो पहला फेज था जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, कुछ गुजरात की न्यू बना था, उसमें जो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स आए और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुरुआत हुआ 2014 में लाल किला की प्राचीर से लेकर, वहां एक पॉइंट रखा गया था, एक लक्ष्य कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है देश को। उस टाइम आपको अगर सुनकर अभी भी लोगों को ताज्जुब होगा, हमारे श्रोताओं को, कि 60 करोड़ देश में खुले शौच करने वाले थे, जो कि पूरे दुनिया की खुले शौच करने वाले लोगों के 60% था, और 2019 में खुले शौच से देश को मुक्त कर दिया गया। सारे गांव, सारे जिले, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने को डिक्लेयर किए अक्टूबर 2, 2019 में कि हम खुले शौच से मुक्त है, लेकिन अभी भी रास्ता सफर बाकी है।
0: बिल्कुल। और अब रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्वच्छता को सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद कचरा फैलाने से बचते हैं और आसपास सफाई भी रखते हैं। तो अगर हम बात करें गुजरात में स्वच्छता की, तो जमीनी स्तर पर आपको किस तरह का बदलाव वहां पर देखने को मिला है?
2: देखिये, जो 2007 में निर्मल गुजरात योजना शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो पहला उनका ये अनुभव था कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, और उन्होंने जो निर्मल गुजरात की शुरुआत की, तो उन्होंने कहा केवल सफाई नहीं, इसमें कचरा प्रबंधन भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए, और लोगों के पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य को उन्होंने एक साथ जोड़ा, लोगों को उन्होंने इसमें भागीदार बनाया, और वो इसलिए बनाया कि जैसे आपने कहा कि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और सरकारी सफाई कर्मचारी अगर केवल इसमें भाग लेंगे तो नहीं हो पा रहा था, लोगों की मानसिकता बदली। कि ये आपका है, आपको स्वस्थ रहना है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, या जो खर्चा आपका बीमारी में खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। और हमने देखा कि जब वो अभियान चला, पूरी

0: हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई और कुछ राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया और उसके बाद भारत सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान के नाम से उसको एडॉप्ट किया। और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी 2014 में तो वहां उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, इसकी शुरुआत 2007 से निर्मल गुजरात से हुई थी और उसमें जनता की भागीदारी और वो किस बड़े स्तर पर हो सकता है वहां से शुरुआत हुई।
1: जी, तो हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। साफ घर, साफ गली, साफ गांव और साफ शहर का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। इसकी शुरुआत सबसे पहले लोगों के घरों में शौचालय की सुविधा पहुंचाने और खुले में शौच की समस्या को खत्म करने पर था। वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता लगभग 39% थी। वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता हासिल की गई और 2014 से 2019 के बीच 10 करोड़ 28 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनाना नहीं है, अब ध्यान इस बात पर भी है कि गांव और शहर कचरे से मुक्त और साफ सुथरे रहें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। 17 सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हो चुके थे। इनमें 5.25 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में है। वहीं 5.38 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। अब सवाल है कि ODF प्लस का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं है, गांव में शौचालयों का इस्तेमाल जारी रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो, गंदा पानी सही तरीके से संभाला जाए और गांव साफ दिखाई दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में स्वच्छता ही सेवा अभियान भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इसका जोर लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान पर है। श्रोताओं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छता के काम में लगे सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सफाई कर्मचारी हमारे गांव और शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए स्वच्छता के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भूमिका है। घर का कचरा अलग रखना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण का अभियान नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, लोगों के व्यवहार में बदलाव और जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन चुका है। क्योंकि जब हमारा घर साफ होता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब गांव और शहर साफ होते हैं तो जीवन बेहतर होता है, और जब सफाई करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा मिलती है तब स्वच्छता वास्तव में सम्मान से जुड़ती है। यही है स्वच्छता से सम्मान तक की यात्रा। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
1: अक्षय जी, आपसे एक इंदौर की अगर बात की जाए तो 7 बार नंबर 1 ये बना, कैसे बना?
3: देखिए, उसका एक मिसाल छोटी सी बताता हूँ। मैं इंदौर बार बार गया हूँ। बोलते हैं झोलाधारी इंदौरी बोलते हैं वहाँ लोगों को।
1: अच्छा।
3: मतलब कोई अगर घर से निकलेगा अपने पास एक झोला लेके जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई कचरा अपना जो अपने जरिए से हो या कहाँ से कचरा दिखा या अपने कोई खरीदा, कुछ छिल के निकले, तो उसको झोला में लेके घर में आएगा, उसको डिब्बे जो हैं उसका निपटान करेगा। जबकि भारत अभी तक भी हारा नीला में जूझ रहा है, और स्वच्छ भारत मिशन की जितना काम करते हैं लोग, अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो, वो लोगों को समझा के थक गए कि भाई हारा नीला, एक सूखा और गीला कचड़े अलग अलग रखो, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, वेट या ड्राई हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाले जो कचरा प्रबंधन के 26 के रूल्स के मुताबिक चार अनिवार्य कर लिया, दो से नहीं चलेगा, चार करना पड़ेगा, जो स्पेशल कचड़े हैं और सैनिटरी कचड़े हैं उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में आप जाएंगे, बहुत पहले 6 कचड़ों के डिब्बा होता है लोगों के घर, माने हर कचड़े का अलग अलग तरीके से निकाल कर उसको रोज डालना, उसके लिए समय लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, रिसोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन करते हैं लोग। और क्योंकि जो कचड़ा सेग्रीगेट होता है या जो कचड़ा को भाग भाग अपना तरीके से किया जाता है, वो सोना बनता है, वो बोलते हैं ना कचड़ा से कांचन बनता है, लेकिन जो सेग्रीगेटेड नहीं होता है वो बीमारी का जड़ बनता है, क्योंकि वो जाके फिर लैंडफिल में डालता है या रास्ते की साइड में छोटे हिप्स बनते हैं, फिर बड़ा लैंडफिल शहर के बाहर बनते हैं, और दुनिया भर का उससे प्रॉब्लम निकलता है। जब तक हम लोग, चाहे जो सोर्स है, जो कचरे का सोर्स है, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो, मॉल हो या इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, जहां अगर जहां से निकलता है कचड़ा, वहां से अगर डिवाइड होकर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है। तो इंदौर में वो होता है। इंदौर के लोगों ने अपने सम्मान के साथ, अपना शहर के सम्मान के साथ सफाई को जोड़ा है। यहाँ तक वहाँ सफाई टूरिज्म होता है, लोग आके देखते हैं कि भाई सफाई यहाँ कैसे होगा। वहाँ पार्क बने हैं सफाई की, जो कचड़े की जो बहुत बड़ा बड़ा होता है जमावड़ा, उसको निकाल कर एकर्स जमीन निकाल के वहाँ पार्क बना जाता है, और सबसे बड़ा बायोफ्यूल का वहाँ प्लांट भी बना है, क्योंकि उसी से शहर का ट्रांसपोर्ट भी चलता है। और ये एक देखने की जगह है। एक जगह में तो वहाँ एक फूड मॉल उन्होंने बनाया है, जो की कचरा की जगह को साफ करके तो वो बना है, और वहाँ की जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो डिग्निटी है, लाइफ कंडीशन है, उनको जो फैसिलिटी है, उनका जो तरीके है, वो देखने के लिए बाहर के लोग जब आते हैं, जो तीर्थ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उज्जैन वो इंदौर में एक स्टॉप ओवर लेते हैं कि हाँ देखें। लेकिन मैं आपको एक चीज पर क्वेश्चन करता हूँ, एक इंदौर से देश का काम नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के जो मैनेजर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी इसको समझते हैं। इसीलिए अभी एक नया बनाया गया है कि इनको गोल्ड लेवल डाल के इनको कॉम्पिटिशन से अलग कर दिया जाए और दूसरों को भी मौका दिया जाए, जैसे सूरत, नवी मुंबई, दूसरे शहर भी आ रहे हैं उसके साथ शामिल होने के लिए। और ये सारे चीज के लिए जो गवर्नेंस मॉडल को मैं फिर एम्फसाइज करता हूँ, जो गुजरात से गवर्नेंस, और स्वच्छता में खाली कंसंट्रेट नहीं है, पानी के पर भी है, और पंचायती सिस्टम पर भी है, वो जीएसटी सिस्टम पर भी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी है, हेल्थ डिलीवरी पर है, बहुत सारी चीज जो कि पब्लिक सर्विसेस होते हैं, उसका एक तरीका है काम करने का, उसको मैं पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलूंगा। भाई आपका पॉलिसी, सब लोग सोचते हैं कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दो है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये गवर्नेंस मॉडल जो 25 साल से जारी है, ये भाई खाली पॉलिसी नहीं, पूरा देश में होगा, सब जगह होगा, और इम्प्लीमेंट बढ़िया से होगा, इस तरह से चल रहा है, इसलिए स्वच्छता में काम हो पाया है, स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस के राज है।
1: बिल्कुल, आपने नागरिकों की बात बताई वहां पर, तो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है सरकार और आम नागरिकों के बीच में तालमेल बिठाना, तो जिसे हम सिविक सेंस के तौर पर भी कह सकते हैं, तो वहां के लोगों में सिविक सेंस कैसे जागा?
3: सिविक सेंस ना, ये जो लोगों ने अगर शहर की, या मेरा शहर की बात छोड़ दीजिए, मेरा घर की, मेरा टोली की, मेरा कॉलोनी की, मेरा RWA की, सम्मान के साथ इसको जोड़ूंगा, ये इंदौर वाले जो हैं अपना इज्जत के साथ इसको जोड़ दिए हैं ऐसे, और वहां जो नेचुरल सिटीजन का रेस्पॉन्स जो है ना, बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बात है कि ये जो चीज है, ये जो इज्जत की जो अपना जो चस्का, ये बाकी शहरों में भी लगना शुरू हुआ है, लेकिन जितना जल्दी होके लगे तो ये जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन दो अलग अलग इकाई है, और एक महुआ के अंदर है और दूसरा है जल शक्ति के अंदर, मंत्रालय के अंदर, ये काम तो जारी है, लेकिन एक दो साल में मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का निरंतर प्रयास रहा तो हमारे शहर भी आगे आगे ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण को आपने कैसे जाना, और क्या इससे नगर पालिकाओं में वाकई काम करने का डर और सम्मान दोनों आया है?
0: जो सर ने भी बात कही है, इंदौर से मैं इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो 2016 में कहा गया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण कीजिए, और शहरों के बीच में एक कंपटीशन कराया गया कि जो नंबर एक पे आएगा, नंबर दो पर आएगा, तो वो जो है हर शहर ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो शुरुआत में 73 शहर थे उसमें, यही इंदौर जो 25वें नंबर पर था 2016 में
1: जी।
0: और 2017 में नंबर एक पर आ गया, और वो सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने जो मानसिकता बदली कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और वो एक जगह फिर धीरे धीरे धीरे वो पहाड़ बनता चला जाता है, तो इंदौर में लोगों ने जो घर घर से कूड़ा उठाना शुरू किया और उसमें उन्होंने, जैसे सर ने कहा कि उन्होंने अलग अलग डिब्बे बनाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सैनिटेशन का अलग, हैजार्डियस अलग, तो उनको ठिकाने लगाना का भी इंतजाम फिर ठीक हो गया। तो यहाँ से कंपटीशन शुरू हुआ। तो ये सर्वेक्षण का फायदा हुआ कि अब इसमें सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा कि जो नई दिल्ली नगर

0: का है, ये तो साफ रहता है, लेकिन जो हमारा दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र है वहां हमने देखा कि अभी भी वहां समस्याएं हैं। तो कंपटीशन में आने के से क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन तो रहा ही, उनके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसमें सरकार के बहुत सारे जो विंग हैं, वो सबने मिलकर काम किया। तो उसका सर्वेक्षण का फायदा ये हुआ कि सभी शहर इसमें कंपटीशन में आ गए और कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा कैसा करें, इसलिए शहरों में अच्छा काम हो रहा है।
1: अक्षय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंदौर के बाद हम सूरत की बात कर लेते हैं। तो 1994 में सूरत को प्लेग सिटी कहते थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। फिर 2006 में तापी में भयानक बाढ़ आई, सूरत ने इस तबाही को मौके में कैसे बदला?
2: आप दूसरी बात पर अभी चले गए हैं लेकिन रिलेटेड है, एक पानी की बात पर चले गए हैं। जो फ्लड था वो तापी रिवर के साथ कनेक्टेड था और उसका गेट खुलने नहीं खुलने पर था, कभी कभी उसका होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर था, एक एस्टिमेट किया गया है। हो सकता है कि कोई लोगों का मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद वो सिक्स है, जैसे भूज का अर्थक्वेक भी हुआ था, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था, करीब करीब सूरत शहर के काफी एरिया डूब गए थे उसमें। और उससे एक तो एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ वो एक देखने की बात है। हम अभी स्वच्छ भारत से थोड़ी एक बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम फ्लड मैनेजमेंट वाटर गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना गुजरात से स्वच्छ भारत की निर्मल गुजरात के जरिए से सीख आया है जिसे स्वच्छ भारत बनना है, ऐसे ही नर्मदा का वाटर को लाके पहुंचाना डिफिकल्ट एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में, और पानी को रोकना जहां रोकना है, फ्लड मैनेजमेंट करना, और जहां सूखा है वहां पानी देना, और घर घर में टैप पहुंचाने का प्रबंधन करना, इसमें भी उसी टाइम में सरकार जो हम लोग बात कर रहे हैं 2000 से 2012 सरकार की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में गवर्नेंस में ये प्रयोग बहुत हुए थे और उसकी नतीजा आगे बढ़ाकर अभी जल जीवन मिशन मान लीजिए, जो कि अभी 80% घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया हुआ है रूरल एरियाज में, माने क्योंकि वो पानी की, घर में पानी की फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। वो भी गुजरात की ये सारे प्रयोग जो आपने जिक्र किया सूरत वगैरह सा, वो क्योंकि पानी बहुत होता है तो लोगों का विनाश होता है, पानी का कम होता है लोगों का प्यास बढ़ता है, विनाश होता है। तो दोनों की चीज को इससे संतुलन करने का, नर्मदा की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को गुजरात के लिए उपलब्ध कराना और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें सहमत लाना, इसमें उस टाइम का गुजरात सरकार जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगुवाई कर रहे थे बहुत बड़ा भूमिका रहा है, उससे ये सीख मिला है। सूरत प्लेग सिटी के नाम में माने कष्ट लोगों को बहुत मिला था, और वो प्लेग क्यों हुआ था, सफाई नहीं होने के कारण, उसका मूल कारण सफाई, इसीलिए बहुत अचंभा की बात है। और लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ा है कि जहां प्लेग हुआ था शहर लोग छोड़ दिए थे, शहर का लोग जाना बॉयकट कर दिया था कि भाई गंदगी इतना है कि यहाँ प्लेग होकर लोग मरते हैं, तो वो हुआ भारत की सबसे स्वच्छ शहर, वही इंदौर के साथ कंपटीशन करके आया, क्योंकि काम ऐसे हुआ है। और वो स्वच्छ भारत मिशन की टाइम में हुआ, ज्यादातर वहां न्यू पड़ गया था लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के टाइम में हुआ, वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट के हिसाब से सूरत 2 साल पहले पहली बार आया वो पैदान पर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नवी मुंबई भी आया है, बहुत कुछ शहर और भी कुछ शहर हैं जो आगे बढ़कर आए हैं, इंदौर पहले आया लेकिन इन्होंने सब क्लब अभी अलग अलग कर दिया है, इनको गोल्ड क्लब अलग कर दिया है, क्योंकि सो दैट कि ऐसे नहीं होगी कुछ शहर बार बार और पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे शहरों को मौका मिलता है। मुझे लेकिन लग रहा है कि फिर भी मान लीजिए 4,800-5,000 शहरों में आज की तारीख में जो 3-स्टार रेटिंग बोला जाता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाँ पूरी तरह स्वच्छ माना जाएगा, मुझे लग जाए कई 100 हैं, 1,000 तक भी नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ सफर और भी बाकी है, रास्ता सही है लेकिन मंजिल थोड़ी और दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है कि हो नहीं पाए, क्योंकि इसका संभावना गुजरात में बना, देश में प्रमाणित हुआ, देश खुले शौच से मुक्त हुआ 2019 में, अभी ये कचरे से भी मुक्त होगा क्योंकि नियत और जो मेहनत वो दोनों चल रहा है। लोगों को थोड़ी सी और जोड़ना है, और भी जैसे अब देखिए गांव के लोग जितना बढ़िया से जुड़ गए फेज वन में, शहर के लोग इतना बढ़िया से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए फेज वन की जो आग है लोगों की, जो इग्नाइट फायर था, वो फायर को वापस लाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, और महात्मा गांधी जी का मानना भी था कि अपने अंदर की स्वच्छता एक पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए, और वैसे भी हर घर में स्वच्छता पहले ही पढ़ाई जाती है कि स्वच्छ रहना है।
2: क्योंकि एक चीज आप देखिए, जैसे भूख हुआ, नींद हुआ, ये कंजेनिटल है, ये जो बच्चा जन्म होता है उसको जरूर भूख होगा, सोएगा, लेकिन सफाई नहीं करता है, सफाई शिक्षा से आता है। घर के बड़े जो हैं, चाहे बड़े भाई हो, पिताजी हो, माँ बहन हो, तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सफाई तुम्हारा काम है, तुम साफ रहो और साफ करते रहो चारों तरफ। ये विदेशों में, सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये इनबिल्ट है, तो हमारे परिवार, क्योंकि

0: ये अपने आप बायोलॉजिकली नहीं आता है, ये सोशियली आता है, एजुकेशनली आता है। इसीलिए जो कैंपेन है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार, कभी ऑफिशियली इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन वो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये कैंपेन है, निरंतर चलता रहेगा, लोगों को उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी जिसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्सेस का न्यू माना गया है, चार पी, फर्स्ट पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, वो हमेशा आगे रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, सबको वो सबसे टॉप कम्युनिकेटर, टॉप लीडर्स, वो स्वच्छ भारत मिशन उनका दिल की स्पंदन है, ऐसे मुझे लग रहा है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, कभी सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर देश में इतना पैसा नहीं लगा था जितना पैसा इन्होंने दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी दिया है। तीसरा है पार्टनरशिप, क्योंकि ये कोई छोटा मंत्रालय का काम नहीं है, सारे मंत्रालय, सारे कॉरपोरेट, सारे मीडिया, सारे सिविल सोसाइटी लोग और सारे इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर करेंगे पार्टनरशिप। चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और लोग, ये लोगों का मूवमेंट है, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को साफ होना पड़ेगा, लोगों को साफ करना पड़ेगा, साफ नहीं तो माफ नहीं।
1: बिल्कुल। अब रोशन जी, अब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जब हम सफाई मित्र की बात करते हैं, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, तो स्वच्छता का अर्थ कैसे बदला?
2: देखिए, इसमें दो तीन बातें समझनी जरूरी है
1: जी।
2: पहले, हम चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो हम लोग खुले में ही शौच जाते थे
1: जी।
2: और गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे इसके कारण होते थे, इसलिए महिलाएं अंधेरा का इंतजार करती थी। और प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि महिलाओं को जब इंतजार करना पड़ता है, या तो सुबह उनको जाना पड़ता है और या फिर उनको शाम को इंतजार करना पड़ता है, इसके कारण उनके कई बीमारियों से जूझती हैं। तो अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था WHO के, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 3 लाख मौतें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से बची हैं, उनकी बीमारियां दूर हुई हैं। और प्रत्येक घर से अगर हम अनुमान लगाएं तो 50,000 रुपए की दवाइयां जो लोग खाते थे वो बची हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर इकोनॉमी
1: जी,
2: जो भी सर बात कर रहे थे कि कचरा है, कचरे का ढेर लग रहे हैं, तो अभी केवल हम उसको कचरा नहीं मान रहे, यानी जो वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा कचरा है उसको हम कैसे उसकी उपयोगिता करें, तो अभी हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे सड़कें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस जा रहा है। तो जब ये अभी स्वच्छ भारत अभियान 2 जब शुरू हुआ था, तो उसका जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस जो चल रहा है, तो उसमें यही है कि जो ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, जो आपका तरल कचरा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि उसका वेल्थ हम बना सके। और चूंकि अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है और इतनी बड़े पैमाने पर है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में तो 90% शहरीकरण हो गया है और ये सब जगह होने वाला है, तो उसमें जो कचरा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती, जैसे सर अभी कह रहे थे। तो अगर कचरा प्रबंधन, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं कि 1,58,000 टन प्रतिदिन हमारे यहाँ ये कचरा पैदा होता है, जिसमें से हम 1,31,000 टन हम इसको ठिकाने लगाते हैं, लेकिन अभी भी करीबन 27,000 टन प्रतिदिन है जो अभी बच जाता है, तो उसको ठिकाने लगाने की चुनौती है। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उसका बिजली बना सकते हैं, हम उसका दूसरे उपयोग कर सकते हैं, तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, तो आप सोचिए कि हम फिर जो हमारा कचरा है, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो हो सकता है कि फिर हमारे वो सोना बन जाए।
1: बिल्कुल। तो अगर हमने अभी पहले शौचालय की बात करी और अब कचरा प्रबंधन की आपने उसके बारे में हमें बताया, तो अब हम हाइजीन पर आ जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, हाथ धोना हो चाहे सैनिटरी नैपकिन का सही निपटारा हो, तो ये अभी भी शर्म की बात समझी जाती है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: अभी तो जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस है, उसमें ये अलग है कि आप सैनिटेशन जो पैड वगैरह है इनके लिए इनका प्रबंधन अलग से होना चाहिए। और स्वच्छता के साथ अगर वो सफाई केवल ऐसा नहीं कि आपको जो है शौचालय आपके घर में बना दिए उसकी स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता सीधे आपके स्वास्थ्य से है। और जैसे मैंने कहा कि अभी WHO के जो आंकड़े हैं कि लोगों की जो बीमारियां होती थी, उन बीमारियों से जो हमारी मृत्यु दर है
1: जी,
2: जो बच्चों की जो इन्फेंट्री जो डायरिया है, हैजा है, आंत्रशोध होता था, वो सालों में बचत हो रही है। और हम मोटा मोटा तौर पर लगाएं, अगर आप हॉस्पिटलों में चले जाते थे उस वक्त, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, तो मोस्टली जो केसेस होते थे वो डायरिया के होते थे, हैजा के होते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के अंदर हमने हैजा के केस सुने, पहले कितने केसेस होते थे। तो कम से कम ये स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है।
0: ये सारे जो स्टडीज हैं, ये कहता है कि इंडिया को कितना इससे फायदा हुआ है, बच्चों को काफी फायदा हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट का जो बचत की बात हुआ उन्होंने कहा है, और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन उसमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो खुले में शौच होता है वो ग्राउंड वाटर का अफेक्ट करता है, फिर वो कुछ चीज के जरिए से, पानी के जरिए से इंसान के अंदर जाता है, उससे बहुत हेल्थ से फर्क पड़ा है। खाली इंडियन एजेंसीज नहीं, बाहर की एजेंसीज, बाहर की जो बड़े बड़े हेल्थ के मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो भी इसको एस्टैब्लिश किए हैं, तो बहुत तरह तरह के फायदा मिला है। गंदगी रहने की या हाइजीन का बात आपने कहा, अगर हैंड वॉश नहीं करें, तो हैंड वॉश नहीं करने का इसका सारा जो इम्पैक्ट है, कुछ टाइम के

0: होता है और इमीडिएटली नहीं दिखता है तो वही तो खराब बात है.
1: हाथ जो है मुंह में लगाना, ये सब चीजें
0: हाइजीन का कॉन्सेप्ट है, इसको इसलिए वॉश बोलते हैं. वॉश को एक सेक्टर माना जाता है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो साथ में देखा जाता है. तीनों चीज इंटरनेशनली नेशनली जहां प्रोग्राम होता है ये तीनों चीज एक साथ रहते हैं, क्योंकि तीनों चीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है. तो हाइजीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड के समय में आया, बिकॉज हाइजीन के बिना आप मर जाएंगे, आपको लगा. और लोगों को उस टाइम में यही तो विडंबना है कि लोग जो अच्छी चीज है वो डर कर ही जानते हैं, भाई ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा. सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा. इसी तरह का अगर इनको लोगों को इस तरह का, इसको ट्रिगर्स बोलते हैं. बिहेवियर चेंज के बाद आपने कहा लोगों का, उसमें ट्रिगर्स क्या है, माने कभी आपका जागरूकता किस ट्रिगर से, कभी डर कर करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं प्यार से, जो भाई बहन का भाई, जब आप जानते हैं शौचालय, शौचालय का जो मूवमेंट चला था पहला 5 साल 14 से 19 तक, उसमें बहुत सारे रक्षाबंधन में भाई बहनों को टॉयलेट्स दिए हैं गिफ्ट में, और शादियों में जैसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी टॉयलेट्स दिया गया है. तो माँ की बेटे के लिए जो प्यार है, बच्चों को रखने के लिए, बच्चे के आदर करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसका एक निशान है कि उसका उसका जो सैनिटेशन एस्पेक्ट है उसको ठीक से ख्याल रखा जाए. ये सब चीजों को मानना पड़े. तो बिहेवियर जो चीज है बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि सस्टेन करना है अगर आगे, इसमें बिहेवियर को तो मजबूत करना पड़ेगा. खाली एक्सेस से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से नहीं होगा. इसलिए स्वच्छ भारत मूवमेंट को लार्जेस्ट सैनिटेशन मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लार्जेस्ट इन बिहेवियर चेंज मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है.
1: तो सर 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वच्छता का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए?
0: कंप्लीट, मतलब मुझे लग रहा है कि स्पॉटलेस कंट्री होना चाहिए. स्पॉटलेस, जैसे आप जाते हैं ना, आप विदेश में क्या जाते हैं, जब कोई आइकॉनिक प्लेस जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, बड़े बड़े, अरे क्या साफ सफाई है बोलते हैं ना. ऐसे भी इंडिया में हर शहर, हर जगह जहां फुटफॉल है, टूरिस्ट सेंटर हो, पिलग्रिमेज सेंटर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, जहां पब्लिक एरिया हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, लोग जिससे उनको लगे कि ये सबसे साफ साफ जगह है, इंसान कहां भी बैठ सकता है, कहां भी खड़ा हो सकता है, कहां भी बदबू नहीं आ रहा है. जो बोलते हैं अर्थ, एयर, वाटर, तीनों चीज जो है हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज ही कंप्लीटली साफ रहे, ये मेरा 2047 को मैं जब विकसित भारत देखूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा देश की हर मिट्टी, हर हवा, हर पानी साफ हो, हर शहर साफ हो, संपूर्ण तरह से. एक है ना कंप्लीट क्लीनलीनेस, एक है स्वच्छ, एक है कंप्लीट क्लीनलीनेस, और पूरा संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो हर गांव, हर शहर.
1: और रोशन जी, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सफाई जो कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है. उनको यूनिफॉर्म मिलती है, पीपीई किट मिलती है, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसे लगता है कि देश उसे देख रहा है. तो क्या स्वच्छता से सम्मान तक का सफर यही है?
2: असल में जो सफाई कर्मचारी हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और चूंकि जब हम कवर करने जाते हैं तो हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि सफाई कर्मचारी सीवर में जाते हैं तो उनके गैस के कारण उनकी मौत हो जाती
1: है. ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत लोगों की मौतें हो जाती,
2: बहुत मौतें हुई, और उसमें फिर सुधार हुआ कि उनको पीपीई किट मिलना चाहिए. और वहां अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है उसमें, गवर्नमेंट ने भी उसमें नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी इंसान गटर के अंदर नहीं जाएगा, मशीन से सफाई होगी. और देखिए मेंटेलिटी बदलने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने उनको सफाई मित्र कहा कि आप उनको सफाई कर्मचारी मत कहिए, क्योंकि असल में वो आपका कचरा उठा रहे हैं, वो आपके जो काम आपको करना चाहिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो आपका बदले आपका काम कर रहे हैं. तो इसलिए उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितनी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितनी उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो उतना मुझे लगता है कमी कम होगा. एक बात और जो अभी आपने कही कि भय जरूरी है, जैसे अभी कोविड में भय था तो लोगों ने अपने हाथ पांव धोना और सैनिटाइज करना जरूरी था. एक भय और दिखाना जरूरी है कि अभी जैसे हमारी सरकार ने कर रखा है कि अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर अगर थूकता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना है, लेकिन असल में हो नहीं रहा है. आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पान खाने वाले लोग बहुत हैं, और जितना सरकार साफ करे, लोग साफ करे, कोई ना कोई पान की पीक मारकर उसे गंदा कर देता है. तो यहाँ मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा. यहाँ दंड और डर, दोनों भय भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है. तो मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं जो 2047 तक पूरा हमारा भारत बहुत सुंदर दिखे और हमारे गांव बहुत खूबसूरत दिखे, जितने हमारे जो मॉन्यूमेंट है, हमारे जो टूरिस्ट स्थल है, उसमें जो सरकार ने भी पीपीपी मॉडल शुरू कर दिया है कि वो कोई भी कंपनी आकर सीएसआर मॉडल के तहत किसी भी, जैसे लाल किला को, ताजमहल को, किसी को भी वो एडॉप्ट कर ले, उसकी साफ सफाई का अपने हाथ में ले ले.
0: काम तो बहुत हो रहा है लेकिन बहुत जल्दी और ज्यादा होने की जरूरत है. और लेकिन ये हमेशा डिबेट रहेगा कि ये पनिशेबल किया जाना चाहिए एजुकेशनली. जनरली हमारे डेमोक्रेटिक इथर्स के साथ ये सारी चीज, क्योंकि इतना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन और इसमें कौन कितना करता है, तो इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट का जो अधिकार के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये फिर अपने आप में रेस्पॉन्ड करने वाले जो है ना, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है. हम तो कुछ सोचे ना भाई, खाली कंप्लेन करने से थोड़ी होगा, हम कुछ सोचे प्रदूषण के बारे में कंप्लेन.

0: करेंगे, कचरा के बारे में कंप्लेन करेंगे, कुल हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर, वो है एक जिम्मेवारी की बात है, वो बहुत जरूरी है स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्टेक्स्ट में।
1: बिल्कुल अक्षय जी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है, तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को जीरो वेस्ट नेशन बनाने के लिए क्या मंत्र होना चाहिए।
0: जीरो वेस्ट नेशन एक तो है कि बहुत एक गांधीयन फिलोसफी था, वो बहुत अभी भी सरकार की पॉलिसी के तहत है, RRR, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। रिड्यूस जो है गांधीवादी है, भाई आप कंजम्पशन को कम करिए ना, लोगों का कंजम्पशन का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन रीयूज रिसाइकल जो है, ये दोनों खासकर रिसाइकल, रीयूज का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन रिसाइकल जो है सोने कुछ भी चीजें, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुआ, सारी चीज को रिसाइकल करने का मैं देख रहा हूँ। वेस्ट कम से कम जनरेट करें, आपने जीरो वेस्ट कंट्री के बारे में बताया, कम से कम जनरेट करें, हमारा घर हमारा दफ्तर हमारा जगह से वेस्ट कम निकले, और जो निकले उसका निपटान होने का प्रिंसिपल लेके, स्ट्रैटेजी लेके, टेक्नोलॉजी लेके, रिसोर्स लेके, क्यों इसका निपटान तो जरूरी होगा, जितना निकले कम निकले और जब निकले निपटान हो, यही होने से जीरो वेस्ट होगा।
1: तो अंत में हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें तो।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी ई कॉमर्स के जमाने में इतना ज्यादा वेस्ट घर पर आ रहा है, चाहे वो थैली के जरिए आ रहा है, चाहे प्लास्टिक के जरिए आ रहा है, उसका कम से कम इस्तेमाल हो, और जितने हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको भी निर्देश दिया जाए कि आप जो अत्यधिक प्लास्टिक भेज रहे हैं, पैकेजिंग भेज रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए।
1: बिल्कुल, क्योंकि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के सिर्फ गांव के लिए नहीं मुझे लगता है अक्षय जी, बल्कि शहरों को भी आदर्श बनाया जा सकता है।
0: मेरा इतना ही मैसेज रहेगा कि आप घर के अंदर साफ सफाई का काम अपने आप करें, और अपना घर के आसपास की साफ सफाई अपने आप करें, और दूसरी बात है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करें या नहीं करें, और घर की कूड़े का जरूर सेग्रीगेट करें खुद।
1: तो श्रोताओं, निर्मल गुजरात ने कैसे राह दिखाई आज हमने जाना, स्वच्छ भारत ने उसे कैसे जन आंदोलन बनाया, और सूरत जैसे शहरों ने साबित किया कि अगर जन सेवा की नीयत हो तो कचरे से भी कंचन बनता है। स्वच्छ भारत सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं, हर नागरिक के सम्मान की कहानी है। इसी के साथ जन सेवा से देश सेवा की आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप स्टूडियो में रहे।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो फरहत नाज को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा की 7वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता फरतनाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: औजिक दिल्लीदेखि लिएर ताबिरे इकाइ घुम्न चढेप भारतकी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीना सही कुनमङ्गा चुप्न मियाङ्ग सेवा तरुक पुगी अखण्ड थौरम थौरम सन्दोक चरी बसे आकाशवाणी इम्फालकी कङ्ला च्यानलदेखि नि हौसी अमुक लान्थोक चरी गाई खो ताकिसी।

ताबिरे रूपराग सिसकप सिंह सकप एम के बिनोदी सैरिंग लेबाग निबई थौरम संदोक्सरी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला सेनेल दगिनी।

0: ta thole netrane pani da ta thole ya
1: ima ima bo
0: as ka thien ka rei brani nang bo
1: hoi ko ten ge wala pa khara lai bala ko ni ima bo as ima bo thaina ba yam nuai
0: ri ne u da ba su pui re kam dau ri ya ha nuai ri da na
1: hingi ba hai duni da ima bo ima bo ka thien ji dai da lai ri ba pak si da me hak ta pham si na ma pham chu su hang ni लाओ ना बोला
0: कोई बड़ी यात्री को सुनो पादो सानो पोसिंग आये रंगो दोरी बनीन है
1: सुनो पाए दी
0: हेरा इक्वान पागी ने मसूदो इमाई पे मा सानो पोसिंग ओ मगे अमनी दिलाई द यात्रे इंगाई का चक्री का इस खांगलाग नम पोंटी को
1: थम्सी माबो इमाबो पु नो पानो पागी दलाई रीरो
0: मागी ने क्वाटर दलाई से से ले बाहुए नांसी सा से
1: से पाबुंग दी इमाबु की युम द चलु रे हाय थेंग नर ते हाय ना
0: ए इपाम द चते दा इपवा गे सिदने मतम खजिक त लेबियो हाय बसि कोइ रबन तान दुम चा रे हाय दन ने सिद दुम ला अब
1: लेब बु नुवाय ब्रो
0: ए ऐ न नुवाय त ब लेते दा इमाबु की पुंगनिंग वा खन द ने अवा ब हाय बसि चंग ज फम खक पी दी ऐ दी मफम खुदिंग मत चप जाना दुम नुवाय ब गमि अवाब में से खंग दिए
1: अदो इमाबो आदे इमाबो उदबदो कयाम नुआइते पाबुंग दुसु अंगाव बग पांख ओइरे चागन थकनि अमत त खंग दमान इमाबो की खोंगुल लीरु सिदा हाइले
0: असिसे सिसाउ से अ कुइना फमगुम सि अ नंग सु थेंकिनि लमलापि
1: पाबुंग दे करी हाइ गे
0: त थोले या होगलसि चसिसे
1: नाइ खु इमाबो
0: त थोले या नंग से इमा बोंने यानिंग त्रेबो
1: आइगिसे पाबुंगी वांग आते नते आइ इमा बोकु यांग नुसे इमा बोकी खनबद यांग वा
0: इमा बोकी खलु नो आइ दि अवाब मसक खम दि हाइरे दना नंग थेंखिनि आइ सु सनिंगे
1: अदो पाबुंग गा मुतंग दु उना बियु इमा बो पाबुंग गा पुंसिगि उना रोय खलबा
0: कारि यु उना दनि लुहुंग बा बातोन तोरो हायो
1: निनि मतोले बिदि मामु कालिन जावगि द लैख्रे इमा बुक्ता दिब्रा
0: ए अदुना निदना अंगा होबोगि पंख ओइरि बदि दि इस नदुते दा पाउ सिदिया
1: अदु खकि नते द इमा बु
0: नंग सिदिनि ओ थोक न लान खंगन खरे हे बेमा
1: इमा बुक्सु असुम बंगां देना
0: ओ आ आइया मु फंधरगे था थोके थोसुन हायो हाय इमा बुक्ता रगे करिनो हां ऐन अरान बंगांग लिबसे करी रोबा
1: इमा बुकु अवाब मसे खंगदे हाइदाइने
0: कोई ने अदु

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं
3: और मैं आपका मित्र अजीत आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं,
2: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
3: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: राजानगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: तो श्रोताओ, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं। पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: जी,
3: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
2: श्रोताओ, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
3: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
2: जी,
3: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है।
2: आप
3: सोच रहे होंगे भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
2: लेकिन श्रोताओ, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
3: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी। फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था। और तो और, गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था। यानी समस्या पर समस्या।
2: तो श्रोताओ, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती

0: कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज़लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं? और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई।
1: जी, कल्पना कीजिए श्रोताओ, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती।
0: जी,
1: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते।
0: जी,
1: यही तो है नवाचार।
0: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
1: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
0: जी,
1: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दी।
0: बिल्कुल,
1: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
0: जी, आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है। वाह, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी।
1: जी, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी। तो साथियों, याद रखिएगा, आज जब हम परीक्षा देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं, उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
0: तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
1: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ

0: कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
1: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
0: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
0: मश्क।
3: होशियार,
0: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
0: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
0: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
1: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली, जरा बताइए तो वो कौन है?
3: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
2: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए। जरा सोचिए, सोचिए, सोचिए।
3: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
2: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
3: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की सातवीं संतान थे।
2: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते।

0: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
1: अपनी मां को यह चिट्ठी दे देना।
0: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी मां को दे दी।
2: मां, ये चिट्ठी।
0: मां ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
3: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
2: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
3: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
2: अच्छा,
3: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
2: अच्छा,
3: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है।
2: हाँ,
3: ठीक है। बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
0: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
3: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
0: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी मां उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी मां के कारण ही उत्पन्न हुई।
3: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
0: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
3: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थीं। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
0: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थीं और मुझ पर विश्वास करती थीं।
3: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी मां का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए

0: विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
1: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
0: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले, लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
1: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
0: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
1: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
0: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
1: लगभग 10,000 बार।
0: 10,000 बार?
1: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
0: अच्छा,
1: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
0: अरे वाह।
1: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
0: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
1: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
0: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
1: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
0: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया, और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
1: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम

0: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
2: उमंग ताबिरे उमंग थर्मसी एनसीईआरटी की तेंबांग लोइनना संदुक जबने
3: इरमदम इरेचागिनी खन्ना नहा अहन खाइदना मतम मतम गि थोकनरपा मियोय कया ngसी एखुइना थिंगरी
4: मखल मखल गि इलेक्शन लाकपदा अनुब अरिब कैंडिडेट सिंग चंगयेंगि दम थोलुतुना लेबक सेमबदा अचोब सरु ज्ञानब होनरी
3: मिचम एखुइ मयामनसु मखोइ बुकनानो करी थबक तौख्रबगे अदुगा करी करी तौरकनी हाइबसिदि खंगनिंगलि
4: लाकदुरिब मणिपुर गि इलेक्शन दा कैंडिडेट उबिनिंगलिब सिंगि वखलोन फोंदोक चनबा अमदि मियामद मसक तक्चनबा मिनिट अहुमदगी मंगा फाउबा रेडियोगी खुथांगदा संदोकनबा मतम थमजरी
3: स्पोंसर तौदुना संदोकचगदबा थौरमसिगिदमक आकाशवाणी फालकी कमर्शियल सेक्शनदा तानबियु
2: आकाशवाणी इम्फाल हौजिकताबी रसी लैता रसी पुमिंगवाखल चनी तरे छुबतांगकता लीलामचा लाइथे थरम लांथोपीरीबा लांगोनजम सत्यजित थरमसी सियर एंड केयर वांखै निंगथेम पुख्री मकपालगी तेंबांग लुइनना संदुक जबनी थरम पुथोपा वायरकबम सर्वजित

0: तपिश का रेड अलर्ट और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके

0: अभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
1: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
4: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
5: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
2: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
7: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशू में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियायोउ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ आप बने हुए हैं और फिलहाल वक्त हो गया है संगीत.com का। एक बार फिर से मैं रुचिका स्वागत करती हूँ आप सभी का।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर प्रसारित फौज भाइयों के मनोरंजन पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

फौज भाइयों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत में प्रस्तुत है ये पहला नगमा। गायिका लता मंगेशकर के गायन में ये गीत है, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत प्रदान किया राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम है दुनिया।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में सुनिएगा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म दिले नादान से ये गीत, जिसे लिखा है नक्श लालपुरी ने और संगीत प्रदान किया खयाम ने।

के राघवेंद्र राव की निर्देशन में बनी ये फिल्म है। फिल्म का नाम है तोहफा। आइए इस फिल्म से सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये दो गीत, जिसके लेखक हैं इंदीवर और संगीतकार बप्पी लहरी। ये फिल्म इस फिल्म को संपादित किया के मार्थन ने और उत्पादन कंपनी का नाम है सुरेश प्रोडक्शंस। इस फिल्म में अभिनेता के रूप में नजर आए जितेंद्र के साथ जया प्रदा और श्रीदेवी।

फौजी भाइयों के लिए ये अगली प्रस्तुति है। निर्देशक तारिक शाह के निर्देशन में बनी फिल्म बहार आने तक से। ये गीत है अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज़ों में, और गीत के बोल लिखे हैं इब्राहिम अक्ष ने, संगीत से सवारा राजेश रोशन ने। इस फिल्म में नजर आए थे रूपा गांगुली के साथ मुनमुन सेन, सुमित सैगल और तारिक शाह।

ये प्रसारण है आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल द्वारा और आप सुन रहे फौज भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में सुनिएगा फिल्म बीवी हो तो ऐसी। निर्देशक जेके बिहारी के निर्देशन में बनी ये फिल्म है, जिसमें नजर आए थे रेखा के साथ फारूक शेख, बिंदु, कादर खान, असरानी, सलमान खान। और इस गीत में आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज की, समीर की बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा।

Tempo, apo, caldeira.

आई तले कहीं को रेजु न ही उखेश्वर चक्रवे आकाशवाणी इम्फाल इच्छी चुक्रो हंडा पुल मोहन पर पद्धे कोडे माहौचु सबु ही न चजिले चक्र का बीजु नौकर वशुए उमेटो फुए उमेजु

उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने टैक्सी ड्राइवर के लिखवा नाव पिंग विवांग भारत टैक्सी एन मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना लॉन्च सामी हैरम इसी पाव में मिक्सॉक पाव अति छोड़ भारत टैक्सी जिया टू व्हीलर टैक्सी के थ्री व्हीलर ड्राइवर्स पिंग सोशल सिक्योरिटी सद लुपा लाख फंगा संभंगरम भारत टैक्सी स्कीम ही लखनऊ गोरखपुर वाराणसी गल प्रयागराज पिंग हिली खरे सद हफोकी दलें अदम ही ट्रान इंस्टीट्यूशन गई दई दिया लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ मेट्रो गल लखनऊ पुलिस पिंग एन एमओयू सोल सहायरम अदम ही ट्रान स्कीम ही वे अजिंगली फ्यू क्रीम स्पिंग रेलवे स्टेशन गल एयरपोर्ट ली फुंग उंग फुंगवा सागी दखलेना मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना स्कीम हिवे अजिंग लुखवा नाव पिंग न उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव क्राम्या विकास पानी लोन खुखवाई सरकार ने खामों सोमी हैराम फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कस्टमर पिंग विवां कन्वीनियंस सामी खवाई सेप्टेम्बर तारीख मुगदशनी संडे थंग पब्लिक सेक्टर बैंक गल रीजनल रूरल बैंक पिंग सोमी रिथेमी हैराम मिनिस्ट्री जी ने चिथेमी दहंग यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन UFBU न सेप्टेम्बर तारीख मुगद जिसना थुलग तारीख थुमरा ऐन तंग कथुम थंग जनरल स्ट्राइक मोहोरम सेप्टेम्बर तारीख मुगद थ्रुक ऐन मुगद सिनी ही सूदी मखमी विवांग स्ट्राइक साखवाई खंगहोत नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संदे थंगहोन बैंक ब्रांच कदोंगली खंगजा थाद ओ साखवाई गसो हैराम मिनिस्ट्री ने मटुमिदा कहांग बैंकिंग सर्विस ली हबका खनो मले खवाई गवर्नमेंट कला बैंक मैनेजमेंट वी यूनियन जिली जिमिक्सो गथुम थंग बैंक स्ट्राइक सारद लेद खलेजि खलनचो खवाई गकाउ हैराम दिल्ली कैबिनेट न शनाव एन ट्रांसजेंडर पिंग विवांग सेफ सामे खवाई थर्म थें खवाई कल ओ सा खवाई मखले नाव पिंग विवांग दुर्गा ई ओडो स्कीम एप्रोव सामी हैराम स्कीम हिवे अजिंग फेस खरेली पिंग इलेक्ट्रिक ओडो थिंग शाकथुम अरान मिगीदले इसी बामे जिथे खमी अठीशोर पिंग इलेक्ट्रिक ओडो थिंग शाकथुम अलुंगली शनाव पिंग विवांग थिंग शाख हंगशनी मीर गल ट्रांसजेंडर पिंग विवांग शाख थुमराद मीर द चिथे मीदले स्कीम ही आया न्यू दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने थान द कैबिनेट मीटिंग गपम चिली स्कीम ही अप्रूव साखमीना दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने मटुमीद कहांग स्कीम ही वे अजिंग शनाव एन ट्रांसजेंडर पिंग न ओटो ही वी मपू गल ड्राइवर गसा की द खल गल स्कीम ही रेवेन्यू डिस्ट्रिक दौंग लिंग राजा द नियर मीर द चिथे मीदले गल क्रेडर नोटाली यमुना एक्सप्रेस वे स्लीपर बस मैट्रिक शोपी ओशोली मिचिको थीसंग हैराम पैसेंजर खंगदे पिंग चीव विंडोली वोकता कहाई न चिया ख सागजुव मसंग मना पुलिस पाउन जिथे खमी आथिशुर ओशोची जेवार पुलिस स्टेशन वी दायानाक पौ खंग नायली खले लिया सैलोंग शोकनाम बस जी नोयडा वी इन अक्राली वाखवाई गजन गल बस चिवी अलूनी पैसेंजर थुमराद फंगा तोंगसान जिथे मिदले इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईटी ने जीरोभारी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड वी के सिली सुन दिल्ली मोहाली चाटीगढ़ पानकुली गल लोथाइनिया जंगना अबम मुगद थ्रुकली सर्च ऑपरेशन खुगा हैराम ऑपरेशन ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वी अजिंगली खुगकाना एजेंसी ची ने जिथे मीद कहांग एक्शन ही प्रोमोशन प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स बिंग ली बैंक फ्रॉड केसेस हिवे अजिंगली एक्शन खुनाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इटी ने जिथे खमी आठीशुद जीरोबारी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ही फेसा लुपा क्रोर शाखनी हंग छो बैंक फ्रॉड गसाली जंग हांगदले पाव मंग चंग रंग लख ललुदा आचुवे खम दाय पाव इम्फाल वे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस स्ट्रीम्स न स्वच्छता हेल्थ सेवा कैंपेन अजिंगली ककथुमा काशुंग सिंगल यूज प्लास्टिक कैंपेन खुगा हैराम मेघालिया चीफ मिनिस्टर कॉन्रेड के सांगमा ने मेघालिया बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रीजनल ऑफिस शिलोंग वी एन स्कूल बिल्डिंग कथर सेमगा खवाई वी फाउंडेशन लुंगशुन मी हैर गल स्कूल बिल्डिंग कथर हंगछत आख थरगत मी हैराम मेघालिया वी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी वी MLA जिशद भारतीया जनता पार्टी BJP ली बासंग हैराम उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने टैक्सी ड्राइवर गल
driver color Rick Vanau Pingwi Wang Parataxi in a Mukhya Mantri Krishat Samiti Yochna Lon Sami Haira Gala Delhi Cabinet National in a transgender Pingwi Wang Save Samik Wai Termateng Make Wai Gala Ot Sakwai Maklenau Pingwi Wang Turka E Auto Scheme Approved Sami Haira Aju Pau Hiling Chang Haira Pau Binghi Akashwani Infalwi in a Chiho Kamina

我的腿比那他红书记那老板干的没让唐经那腿比给你拉起那个心里爱那

सरई हली मागी बे मई मागी वारिद कुथुईवी मागी बे मा मान मशानु शिव से लांगले नंदी मान नु शिव से कौर ब्रनी सनाहन नंगलुदाम थाबुम अहुम फाजी लगलव फाउबदा न पाबुंग सैरा किली निदला कबो पदाम खोंगी बुलंदम देती थुईबी शान नुगाइन ले छो खरबा ईमान करम हिंदुन लेग दौड़ीवा ईशान गि सिंह लो उद्र ईमादी अहिंग सी

युवराजन थवाई शाकपेश ममा तुन शीघ्र गिहाई बसी करीगुम्ब शिरो खीद रहे युवराज जी थवाई है वाई ममा तुन सिंह ते ये नहीं

0: आकाशवाणी इम्फाल निंथौखोंजम सुनी ने पाउ पाजरी अहानबद मरोइब पाउ मुख्यमंत्री युनाम खेमसाना माहिरुइ सिंह ने ममल यामलब स्किल लमसुंग एक्सपीरियंस तानसिनदुना राज्य सुपुसाखत अनबदा थौदांग लोंगना बा अपील तौरी लेबाक्सिन बथुंग नजथरीबा सेबा संकल्प अभियान गि सरुकम ओइना तोंगान तोंगान मफम सिंह द थौरम कया पांगथुकली सेक्युरिटी फोर्स इम्फाल जिला गि सैजांग चेराउ चिंगदगी खुजु कुलाय कया फागले सेलथुम मंत्रालय नहाइरे पब्लिक सेक्टर बैंक अमसुंग रीजनल रूरल बैंक नमक थासी कुंतरे नोमाइजि निमित थोंग हांगनी अमसुंग जापान एशियन गेम्स दा उशु शंदा इवेंट दा नारेम रोशिबिना देबिना लुपागि तकमात लौरकले मुख्यमंत्री युनाम खेमचंद सिंह ने ngasi आईआईटी मद्रास दा सेमीकंडक्टर सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी स्किल ट्रेनिंग तौनब खलब मणिपुर की माइनोरिटी ओबीसी मसुंग शेड्यूल कास्ट माइरुइ सिंह उनदुना वारी सानाखरे माइरुइ सिंह असे मणिपुर माइनोरिटीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी की थौरांग मखादा खनगतपनी वारी सानाबादु इम्फाल दा मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीट हाइब्रिड मोटा पांगथोकी आईआईटी मद्रास की ऑफिशियल अमसुंग फैकल्टी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कुतांग द सरुक याके मुख्यमंत्री नहाय सेमीकंडक्टर सेक्टर की टेक्निकल एस्पेक्ट असी अखनब ओइरबसु नौना थोरकलिब लमसना नहारोल द सिंथानिङा ओइब खुदोंग चाब कया पिरे आईआईटी मद्रास द ट्रेनिंग तौरब माहिरोइ सिंहना ममल यामलब स्किल अमसुंग एक्सपीरियंस पुरकतुना राइजे सिबु साखोतन बदा थौदांग लोगनि हाबिगि थाजब फोंदोखे थौरमदु द माइनोरिटी अफेयर्स ओबीसी अमसुंग शेड्यूल कास्ट की कमिश्नर कम सेक्रेटरी आर्मस्ट्रोंग पामेसु याउखे वर्चुअली आईआईटी मद्रास की डायरेक्टर प्रोफेसर बी कामाकोटी प्रोफेसर आर साराथी अटै फैकल्टी मेंबर सिंह अमदी ऑफिसर सिंह सु सरुक याके पीपल्स रिफॉर्मेशन पार्टी पीआरटी की प्रेसिडेंट एनडी मंगसाताबम नहाइरे मणिपुर राजनीति की माइथों हांगदोकपदगी मियाम की सेवा तौबगी पुनसी की थाक ता अवनब पुरकपना हेन मरु ओइखंदुना दोल असे लिंखत किबने ngasi इम्फाल द पाउमी सिंह उनाबा मसुंग मैनिफेस्टो फोंबगी थौरम द मांगना हाय माकी दोल पीआरपी असी मणिपुर की मियाम की दमक दायित्व खंगना लेनबगी पांदम द राज्य सिद मरु हुंदुना सेमबनी दोल असी सयसगी ऑगस्ट 13 द रजिस्टर तौकिबनी एनडी मंगसाताबम नहाय मथंग सहित पांगथुकनी हायन पानरेबा मणिपुर विधानसभा की मिखल द दोल असी की चपसाबा मिरे पुथोकतुना मिखल थेंगनगनी मणिपुर की हौजी ओइरेबा समस्या सिंह असी कोहनबगी अमतंगायरेबा पामबैदि रीजनल पार्टी सिंह ओइगनी एनडी मंगसाताबम नहाय
1: पार्टी अम प्लेटफॉर्म अब लिखत पाई सोलूशन से प्रॉब्लम से सोलूशन अम पीनब करीगी नुहरगा प्रॉब्लम से पोलिटिकल प्रॉब्लम ने प्रॉब्लम से इचम चमना लो एंड ऑर्डर और अखोई की स्टेट सोनबगी खाली अखोई इशान इशा की प्रॉब्लम से सोल्व तौजगदी वाखन लोनबद पी आर पी से लिंखत्नी पी आर पी से लिंखल करीनो अखोने कम सोल्व तौदनो पी आर पी से लिंखल कमन प्लेटफॉर्म पीना फोनरग इलेक्टेड एम एल एस मैम से असेंबली चंगा लो मेकर्स है खागे मको मैम से लो मैम सेम खोलग नाव लो मैम तो इम्प्लीमेंट तौरगदने
0: चुरासानपुर डेप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार नंगसी चुरासानपुर टाउन अमसुंग तुइबोंग रिलीफ कैंप सिंग द हक्थेंगना चतुना यंगसिनक्रे डेप्यूटी कमिश्नर की कौंसल अदुद रिलीफ सेंटर सिंग असिद आईडीपी सिंह ना मखोइने थेंगनरब खुदोंगजादब सिंह डेप्यूटी कमिश्नर द पाउदम की तुंगद श्री कृष्ण कुमार ना माइहौ लांगपोकतगी ngakthoknaba सेंटर अहुमद फायर एक्सटिंग्विशर सिंह खुसिनकी कौंसल अदुगी मनुंग चेने चुरासानपुर की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पी एच हेनखोनेंग माटी की मेडियंग मखाद डॉक्टर लालबोई लुचिंग मेडिकल टीम लेम लाइंगी केम पांगी लोन हिदाक लांगथक्सु लेम येंथोकी पाउ की मरक थन अटेंब ब्रेक अमा
2: Across X wahi ki waningai oidri hokiba sehi english singani kunithoi dagi manipur ge lokpham da sehi mari chupna season aduna lakoda my park tuna laklaba across x season abiu phohun khraba amadiling khraba matung numit humphumanga ni dagi humdrani sukhraba wahi sukta tadriba amadita khraba lokpham da hidak asikap thokpiu hidak asina miyoi

0: bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said, spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognised for their last mile delivery.
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है. वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं. हमें इन अनुभवों से भी सीखना है. अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं. वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है. एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए. एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने.
0: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2030.

아니 하이차바나요 콩냅다 아니 높은 실내 우소이 난비

那查理吧，在那一个门哈，弄爱听啊，西的在那一步路一的不亚的还等呐，他外不要那啥本呢呐，阿哈勒里嘛那。

ओक्रम राजेंद्र सिंह मियांगीना राजेंद्र ओक्रम ख्वाई नगमापाल दा ओक्रम जुगे सोरमदी ओक्रम ओंबी नयेनी देवी अनिगी मचानीपा अहल ओइना इं कुमजाली सिंह मचामापल निफुनी थोइगी जुलाई कुनहुंदोई दा ताइबुंग दे खोंदा रखी मचिन मनाउ पुगविनबा निपा तरुक अमदी नुपी मंगानी अदुगा ममा अतोपा अमगी मचाना मापल नि पुन्न मशीन मनाउ कुन्ने

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक पुंफम सिद पुजरगली अदोन पोस्टकार्ड की खुथांग खनबी की बा ताबिनिंग मणिपुरी फिल्म इसई सिंग अहानब लखुचरी अखुनब मणि फिल्म दगी पुष्पारानी ने सक्प नरेंद्र निगोंब ने छैरिंग बा तोंब थांगजम ना छैरांग बा करी की तंबी बनो नुंगसी बा इसई जि खुदा बिदोन खनबीरक बा मियोदी इरोय सेंब दगी पेबम इनाउचानी अदोंग इसई खुदोल तमजरी ताबिनरसी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान। दोस्तों कहते हैं ना कि दिन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, रात आते ही दिल कुछ पुरानी बातें याद करने लगता है। किसी की मुस्कान, किसी की आवाज और किसी के साथ बिताया हुआ वो एक छोटा सा पल। तो आज की शाम उन सभी लोगों के नाम जिनके दिल में किसी के लिए खास जगह है, और उन लोगों के नाम भी जो प्यार और मोहब्बत तो महसूस करते हैं लेकिन उन्हें लफ्जों में, शब्दों में बयां नहीं कर पाते। तो चलिए कुछ देर के लिए दुनिया की सारी चिंताओं को दरकिनार कर देते हैं और डूब जाते हैं प्यार, याद और मीठे उन मीठे एहसासों के नाम इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: कभी कोई बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है, और कभी कभी तो हमें खुद भी पता नहीं चलता कि कब कोई इंसान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम या यूं कहूं कि सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया, ठीक इस खूबसूरत से गीत की तरह।
1: यार वो है कि मर कर भी तुमको

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

क्या खूबसूरत धुन थी, और शायद कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो कानों से सीधा हमारे दिल तक पहुंचती हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि प्यार हमें बदलता नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी कुछ खूबसूरत चीजों को सामने ले आता है। हम किसी के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना सीख जाते हैं, किसी की पसंद याद रखने लगते हैं, और किसी के चेहरे की मुस्कान देखने के लिए हर छोटी से छोटी कोशिश करते हैं। दोस्तों, कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता है, बल्कि किसी की खुशी के लिए दिल से काम करना भी होता है। लेकिन दोस्तों की हमेशा हमें एक बात याद रखनी चाहिए, मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत लफ्जों से नहीं, बल्कि सम्मान, भरोसे और समझ से भी बनती है।

दोस्तों, रात का अपना एक जादू होता है। दिन में हम कितने ही लोगों से घिरे रहें, कितनी ही बातें कर लें, लेकिन रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो हम खुद से मिलने लगते हैं। और इसी खामोशी में कभी किसी की याद बहुत करीब से महसूस होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।

0: सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 trillion की अर्थव्यवस्था है और $30 trillion की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब $20 trillion की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले UPI लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी MDR कोई उपकर या अधिभार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि MDR का एक भी रुपया सरकार के पास नहीं जाता। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम परीनाज धालीवाल, अनंत जीत सिंह नरुका और सीमा को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with resolve to build a developed India. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and nation interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organised by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The Minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontations and the security dilemma. Government sources today emphasized that merchant discount rate MDR on person to merchant UPI transaction above ₹2,000 is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic custom duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic custom duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jaishankar said the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary West C.B. George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the implementation of the two-state solution in New York on the margins of UNGA today. External Affairs Ministry said in a statement that India's approach combines political commitment with practical support. Mr. George also participated in the second G7 Development Ministers meeting organized by the G7 chair, France, on the sidelines of UNGA in New York. Earlier, Mr. George participated in a high-level side co-hosted by Ghana, Germany and France, Reparatory Justice. Heavy to very heavy rain continued in several parts of Odisha under the influence of a deep depression over north coastal Andhra Pradesh and adjoining South Odisha. The system has triggered waterlogging, road disruptions and a flood-like situation in vulnerable areas, while the state government has intensified relief and evacuation measures. And in the Asian Games 2026, Indian runners have clinched silver in the mixed 4x400-meter relay race at Nagoya today. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000-meter race after finishing at third spot in 32.50 minutes. The achievement marks India's first medal in the women's 10,000-meter event at the Asian Games in 16 years. And that is the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे. उदयन, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस स्लंप. सेंसेक्स टंबल्स ओवर 1200 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 23,063. The government says India is manufacturing over 99% of the country's total domestic demand for mobile phones and global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में गिरावट. सेंसेक्स 1,200 अंकों से अधिक फिसला. निफ्टी 23,063 के स्तर पर बंद हुआ. सरकार ने बताया कि देश में मोबाइल फोन की घरेलू मांग का 99% से अधिक का उत्पादन भारत में हो रहा है और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial

0: डिसीजन।
1: प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1248 अंक लुढ़ककर 73581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक लुढ़ककर 23063 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में भी दबाव देखने को मिला। मिड कैप 100 सूचकांक 2.3% फिसला, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सत्र की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई। बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और बैंकिंग तथा बीमा शेयरों में बिकवाली के दबाव ने बाजार को प्रभावित किया। सेंसेक्स और निफ्टी पूरे कारोबारी सत्र के दौरान दबाव में रहे और कारोबार के दूसरे हिस्से में बिकवाली और तेज हो गई।
0: Benchmark domestic equity indices slumped over 1.6% today. Sensex tanked 1,028 points to close at 73,581. Nifty plunged 384 points to settle at 23,063. In the broader market at the NSE, the mid-cap 100 index shed 2.3%, while the small-cap 100 index lost over 1.5%. This morning, markets opened with a gap down as a spike in bond yields, elevated crude oil prices and a sell-off in banking and insurance stocks weighed on the indices. Sensex and Nifty remained under pressure throughout the session, with a sell-off intensifying during the second half of the trade.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 29 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन एनटीपीसी अपरिवर्तित रहा। प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस करीब 5.5%, एक्सिस बैंक 4.7% और बजाज फिनसर्व 4.1% नीचे बंद हुआ।
0: In the sectoral indices in the Bombay Stock Exchange, all 28 sectors edged downward. Among the top losers, mid-small private banks declined 2.8%, housing finance lost 2.6%, and financial services shed more than 2.3%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,884 companies declined, 1,473 companies advanced, and 216 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। उद्यन, हम जिस तरीके से मार्केट को अगर ट्रैक करते हैं पिछले कुछ दिनों से, बल्कि पिछले लगभग कुछ महीनों से अगर मैं कहूँ, तो हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड को लेकर के अभी कुछ दिनों से एक सतर्कता है मौजूद। कच्चे तेल के दाम कितने वॉलेटाइल हैं वो हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन आज बीमा के शेयरों में जो एक उहापोह और उथल पुथल देखने को नजर आया, उसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से इसने मार्केट की गिरावट में, जो 1.5% आज मार्केट गिरा, उसमें कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया है?
2: जो बीमा क्षेत्र ने काफ़ी कंट्रीब्यूट योगदान रहा, और उसका कारण यह है कि ये सिर्फ बीमा क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ नहीं है, ये बैंकों से भी जुड़ा हुआ है
1: जी।
2: तो
1: दबाव उन स्टॉक्स पे भी हमने
2: बिल्कुल हुआ है, जो आपने कुछ बैंकों के नाम लिए, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए, वो सीधा जुड़ा हुआ है
1: जी।
2: तो घटनाक्रम ऐसी रही कि IRDA जो आपकी बीमा क्षेत्र में रेगुलेटर है, जो मैनेज करती हैं, रेगुलेशन रेगुलेट करती हैं, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जो कि बीमा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जो वितरण होता है, उससे जुड़े वहाँ पे कमीशन मिलता है, वहाँ पे फीस होती हैं, तो उससे जुड़ी हुई कई बातें जो हैं उसमें, अभी तो वो नियम बने नहीं हैं, पर उसमें उनकी मंशा, उनकी सोच सामने आ रही है, और ये एकदम से नहीं आया, इसके बारे में काफ़ी संकेत मिल रहे थे और ये डिस्कशन पेपर आ गया, क्योंकि ये सरकार और रेगुलेटर की मंशा है, तो ये मान के चल रहे हैं कि इस तरफ ये जा रहा है। और ये अभी जिस तरीके से बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस को किया जा रहा था, उसकी जिस तरीके से उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब मुनाफा जनरेट किया जाता था, उसके उसमें एक भारी बदलाव की के संकेत हैं। उसके वजह से आपके जो जितने भी कंपनीज, जो बीमा क्षेत्र की कंपनीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, स्वास्थ्य इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया, जीवन बीमा हो गया, और वो बैंक जो वहाँ, देखिए बीमा का जो वितरण होता है वो दो तरीके से, एक तो एजेंटों के थ्रू से होता है, एक ब्रोकर जो ब्रोकर्स होते हैं, बिचौलिया होते हैं
1: जी।
2: उनके थ्रू से होते हैं, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट ब्रोकिंग, और तीसरा होता है बैंक के थ्रू से जाता है। तो ये तीन पाइप्स हैं जिनके थ्रू से आम जनता या जो भी उपभोक्ता उसके पास पहुंचती, ये तीनों में असर है। ये जो डिस्कशन पेपर है वहां पे तीनों में असर है। और आप अगर बेचते हैं उसमें उसके एवज में आपको जो कमीशन मिला करता तो उसमें कमी के बारे में बात हो रही है। क्योंकि आप कमी के बारे में बात कर रहे हैं तो जो कंपनियां उसको बेचती थी, जो इनको मैन्युफैक्चर करती, जो बीमा कंपनी इनको तैयार करके छोड़ते थे, क्योंकि अगर आपके बिचौलिए या ब्रोकर्स या एजेंट बेचेंगे तभी आप कमाएंगे
1: जी।
2: तो नंबर वन उनको फर्क पड़ा, बीमा कंपनी के जो कंपनी है वो उनको फर्क पड़ा, जो बीच में है उनको फर्क पड़ा, और जो बैंक है उनको फर्क पड़ा। तो अगर आप बीमा कंपनी और बैंक अगर लेते, बैंक खुद ही जो फाइनेंशियल सेक्टर में आप इंडेक्स में देख लीजिए जबरदस्त उनका वेटेज है, तो ये दोनों मिला के ही ये, अगर ये तेल के दाम वाला जो सुर्खी जो है वो ना होता, ये खुद में ही काफी था। और उसके ऊपर तेल वाला हेडलाइन आ गया जो उसकी खबर आएगी जिसमें लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, और चारों तरफ विश्व भर में बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड में जो आपको मिलता है उसमें भी आ गया। तो उस वजह से आपने इतना जबरदस्त मार्केट में रिएक्शन देखा। तो ये बताता चलूं एक एक एक सेंटेंस और कि बैंकों के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बैंकों के लिए इंश्योरेंस जब वो बेचते हैं वो फी इनकम है। तो बैंकों के दो तरह के आय होते हैं, एक तो वो आप और हम जैसे लोगों से पैसे लेके, वो डिपॉजिट लेके फिर दूसरों को लोन देते हैं, तो वो फंड इनकम होता है। तो उसमें जो बीच में जो मार्जिन होता है उससे वो कमाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फी इनकम, वो इंश्योरेंस को बेचते हैं उसके एवज में उनको एक परसेंटेज मिलता है, ब्रॉडली हम मान के चलते हैं। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको ऐड करता था। अब अगर कोई आके कहता कि आपका 15% या जो भी कमीशन था वो आपको नहीं मिलेगा या आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, तो उसमें पूरा जो आपने जो इन्वेस्टमेंट में जो गणित आप बनाते हैं निवेश करने से पहले, एक बैंक में, एक इंश्योरेंस कंपनी में या किसी ब्रोकिंग कंपनी में, ऑनलाइन जो एग्रीगेटर्स हैं जो वो बेचते हैं, जो ऑनलाइन बेचते हैं, सब में ये फर्क पड़ जाता है। तो उसके वजह से आप देख रहे हैं जो रिएक्शन हो रहा है वो इस वजह से।
0: So basically, IRD has recommended a cap on life insurance policy sales to the tune of 25%. Agencies making that commission fee and the distributors being banks with the income has been hit. We have more on that story from my co-anchor.
1: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत बीमा वितरण के लिए तीन स्तरीय सरल व्यवस्था, खर्च की सीमाओं में कमी, कमीशन ढांचे में बदलाव और बीमा की गलत बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं। बीमा विनियामक ने बीमा वितरण की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव से संबंधित एक सार्वजनिक परामर्श पत्र जारी किया है। इसमें बीमा वितरण व्यवस्था, खर्च, कमीशन, बाजार आचरण, पारदर्शिता और डिजिटल बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल से जुड़े सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित नियमों के अंतर्गत बीमा कंपनियों और बड़े वितरण संस्थानों को अपनी कमीशन नीतियों और ढांचे की जानकारी सरल और आसान भाषा में देनी होगी। कुछ निर्धारित वाणिज्यिक बीमा पॉलिसियों में भी कमीशन से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा ताकि ग्राहक ये जान सके कि पॉलिसी की कीमत में वितरण की कितनी लागत शामिल है। एडा ने प्रस्ताव दिया है कि हर बीमा पॉलिसी को बेचने वाले संबंधित व्यक्ति की पहचान से जोड़ा जाए, साथ ही बीमा की गलत बिक्री से जुड़े मामले की जानकारी सार्वजनिक की जाए और गलत बिक्री के मामले में एजेंट या संबंधित विक्रेता से कमीशन वापस लेने का प्रावधान किया जाए। प्राधिकरण ने प्रस्तावित सुधारों पर आम जनता और संबंधित पक्षों से 25 अक्टूबर 2026 तक सुझाव तथा टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
0: उदयन, वाइल देयर इज क्लियरली अ बेनिफिट फॉर कंज्यूमर्स बिकॉज द कॉस्ट ऑफ बाइंग इंश्योरेंस इज लाइकली टू कम डाउन बिकॉज ऑफ अ कैप ऑन एजेंसी फी, द मार्केट टुडे लॉस्ट 1.25 लाख करोड़ रुपीस financial and insurance stocks because of the hit on their income sources with this policy decision, which is not, it's been a recommendation right now by IRDA. How do you see the markets bouncing back, especially in the backdrop of what's happening geopolitically?
2: Well, let's start with the insurance bit, because I think it's fairly important what has come out. So, you know, this, even if I want to be very restrained, I still can.

0: purchases has been set to ensure that UPI remains the most affordable digital payment acceptance tool for commercial enterprises. It said that this cost difference helps merchants lower their payment processing expenses while accepting digital transactions. Ayushi Singh for Market Mantra.
1: अमेरिका और चीन ने अपने व्यापार युद्ध विराम को 2 महीने बढ़ाने पर सहमति जताई है। इससे दोनों देशों को व्यापक आर्थिक समझौते पर बातचीत के लिए और समय मिलेगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बुसान समझौते के अंतर्गत हुआ ये युद्ध विराम अब 10 जनवरी 2027 तक जारी रहेगा। मूल युद्ध विराम समझौते की अवधि 10 नवंबर को समाप्त होने वाली थी। ये समझौता पिछले अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई सहमति के बाद हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों और उच्च तकनीक वाले उत्पादों के निर्यात पर कुछ प्रतिबंधों में ढील और व्यापार युद्ध के दौरान लगाए गए भारी शुल्क को रोकना शामिल है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन पहुंचे हैं। उदयन, आप इसे कैसे देखते हैं और बेसिकली स्टॉक मार्केट पर इसका आप कैसा प्रभाव देखेंगे?
2: नेगेटिव प्रभाव तो नहीं है, पर दिलचस्प बात यह है कि अभी ये तब हो रहा है जब वो 100% 100% टैरिफ लगाने वाली बात हो रही है कि जो भी रशिया से तेल लेंगे। देखिए कैसे मानदंड है, चीन के लिए एक मानदंड है
1: जी
2: और हमारे लिए एक मानदंड है
1: जी।
2: तो ये आपने सवाल पूछा नहीं था पर ये बताने लायक बात है
1: जी बिल्कुल,
2: क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बातचीत भारत और अमरीकी प्रशासन के बीच में हो रहा है तो दिलचस्प बात ये कि उससे जो नेगेटिव हेडलाइन बनता है और सेंटिमेंट बनता है, क्योंकि बुरे खबरों का जो हेडलाइंस हैं वो कुछ ज्यादा ही आ रहा है तो उसका जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, हाई ऑयल प्राइसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, सप्लाई चेन के ऊपर असर, तो एक और सुर्खी ऐसी आ जाती है जो नेगेटिव होती है, उससे बेहतर है कि जितने हैं उसी को हम मैनेज करें।
3: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 2.1% higher at $105.25 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 1.7% up at $93.76 per barrel at the time of writing this report. Then some more bad news. Diesel prices have been going up substantially in this short term. How is that going to be arrested?
2: I don't know much about diesel prices in India. I've only read about in the US. But if they are going up, I'm sure the government is going to intervene because it's an essential input in agriculture and in your transport. So I don't think the government is going to be a spectator in this, and they will come into act. But this is not as tough, Arjun, to manage as the LPG problem and the natural gas problem, which we were
3: importing. It's affecting Russia and Europe because of what's happening.
2: No, of course, we have long-term contracts with Qatar. So that was an issue. But I think this is more manageable, I would say.
1: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 0.8% की गिरावट के साथ 1,50,785 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी लगभग 2% के नुकसान से 2,28,248 रुपए प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुई। उदयन, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, मेरे और अर्जुन के सवालों के जवाब देने के लिए।
2: धन्यवाद।
3: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices slump. Sensex tumbles over 1,200 points. Nifty settles at 23,063. The government says India is manufacturing over 99% of the country's total domestic demand for mobile phones. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर

0: भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग दो राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। जापान एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशिबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said, spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. Government sources has emphasized that merchant discount rate MDR on person to merchant UPI transaction above 2000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to customers and mitigate inflationary pressures rising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic custom duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic custom duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar held a meeting with Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jayashankar said, the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary West C.B. George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution in New York on the margins of UNGA. External Affairs Ministry said in a statement that India's approach combines political commitment with practical support. Mr. George also participated in the second G7 Development Ministers meeting organized by the G7 chair, France, on the sidelines of UNGA in New York. Earlier, Mr. George participated in a high-level side co-hosted by Ghana, Germany and France Reparatory Justice. Secretary East External Affairs Ministry Rudrendra Tandon attended the National Day reception of Uzbekistan in New Delhi. In a social media post, External Affairs Ministry said the Secretary East highlighted the progress in India-Uzbekistan relationship across diverse sectors and reaffirmed the resolve to further enhance comprehensive strategic partnership between them. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for a heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Vidarbha today. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe and Telangana today. And in the Asian Games 2026, Indian runners have clinched silver in the mixed 4x400m relay race at Nagoya. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000m race after finishing at third spot in 32.50 minutes. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आप सुनने जा रहे हैं, आवाज है मुकेश की और सुमन कल्याणपुर की। फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

जी हाँ, एक वो भी जमाना हुआ करता था जब परदेश जाने वाले की एक उम्मीद बंधी होती थी कि परदेसी परदेश में सुकून से अपना काम कर पाता था और प्रेम को संजो कर रख पाता था, क्योंकि प्रेम खत में बंद होकर पास पहुंचता रहता था और उसी प्रेम के सहारे वो परदेश में खुशी खुशी अपना काम करता था, जीवन यापन के संसाधन जुटाता था और फिर उन संसाधनों के साथ प्रेम की सौगात लेकर वापस अपने गांव की तरफ लौटता था, अपने घर की तरफ लौटता था। एक वो भी जमाना हुआ करता था। कभी खत लिखना एक रस्म हुआ करती थी। कागज पर किसी अपने का नाम लिखते ही मन खिल उठता था। स्याही सूखने तक जैसे भावनाएं उसी पन्ने पर सांस ली।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में मैं हूं आपके साथ जयति। बात कर रहे हैं उस जमाने की जब खत लिखना किसी रस्म की तरह हुआ करती थी और निभाने वाले बड़े मन से इस रस्म को निभाया करते थे। गांव की गलियों में डाकिये की आहट कभी किसी उत्सव से कम नहीं होती थी। लोग अपने नाम की पुकार सुनने को बेचैन रहा करते थे। किसी के लिए मायके का खत आता और किसी के लिए परदेश गए पिया का संदेश होता। नवविवाहिता के लिए तो वह लिफाफा जैसे उसके अपने घर की खुशबू लेकर आता और कभी कभी प्रेम में सराबोर होकर वो खत जब नवविवाहिता के पास पहुंचता तो चेहरे पे जो रंग आते थे वो रंग भी देखने लायक होता था। कागज खोलने से पहले ही आंखें जाने कितनी बातें पढ़ लिया करती थीं। एक छोटा सा खत कई दिनों की दूरी मिटा देता था। आज आवाज और तस्वीरें तुरंत पहुंच जाती हैं, पर उस कागज को छूकर अपनेपन को महसूस करने की जो बात हुआ करती थी वो बिल्कुल अलग हुआ करती थी। और यही था खतों का वो खूबसूरत सा दौर। आगे और भी बातें करेंगे, फिलहाल सुनते हैं एक गीत। फिल्म का नाम है मेरे लाल, आवाज लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है जाने अनजाने।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आज हम बात कर रहे हैं बीते जमाने में जो खतों की एक दुनिया हुआ करती थी, जब खत लिखना सबसे पसंदीदा काम हुआ करता था। खतों में छुपी होती थी दुनिया भर की बातें, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा इंतजार और न जाने कितनी सारी बातें। कागज के एक टुकड़े में बंद होकर वो खत, जिसे जहां पाना होता था, जब वो खत मिलता था तो पाने वाला भी उन सारे एहसासों से होकर गुजरता था जो लिखने वाला कागज में बंद करके अपने प्रियतम तक पहुंचाता था। गांव की नई दुल्हन को मायके से आया खत सिर्फ कुछ पन्ने नहीं, पूरा अपना घर जैसा लगता था। माँ की लिखावट देखते ही आंखों में आंगन उतर आता। बाबूजी का हाल पढ़ते हुए मन जैसे घर की चौखट तक पहुंच जाता था। भाई की शरारतें, बहन की शिकायतें, सब कुछ कुछ पंक्तियों में समाया होता था। वो खत पढ़कर कई बार तह किया जाता, फिर संदूक या कपड़ों के बीच बड़े जतन से रख दिया जाता, क्योंकि कागज पुराना हो सकता था मगर उसमें लिखे अपने लोगों के शब्द कभी पुराने नहीं होते। शायद इसलिए खतों में आज भी स्मृतियां कहीं ना कहीं जीवित हैं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है संगम, आवाज है मोहम्मद रफी की।

रात ढली तो पारिजात ने, रात ढली तो पारिजात ने आंगन भर दिया फूलों से, जैसे नव ने चुपके से तारे भेजे हों धूलों से। केसरिया डंठल वाले सफेद फूल कितने प्यारे ओस में भीगे लगते हैं, धरती के सपनों से न्यारे। भोर हुई तो शाखें खाली, आंगन फूलों से भर आया। रात ने जाते जाते जैसे सुगंध का संदेशा दे दिया, रात ने जाते जाते जैसे सुगंध का संदेशा दे दिया। भोर की पहली किरण पड़ी, पारिजात मुस्कुराया। रात की गोद से झरकर धरती ने श्रृंगार सजाया। सफेद पंखुड़ियों के बीच केसरिया रंग दमकता है, जैसे किसी चित्रकार ने एक रंग से स्वप्न रचा है। हवा चले तो महक उठे पूरा आंगन पूरा द्वार, इतना कोमल फूल की जैसे छू जाए कोई मधुर विचार। पारिजात की इस खुशबू में रात अभी भी बाकी है। भोर भले आ गई हो लेकिन फूलों में अब भी रात बाकी है, फूलों में अब भी रात बाकी है। और अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है भाभी।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी एक बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अभी तो मरने हो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। आगरा के फतेहाबाद से बीजेपी विधायक छोटे लाल वर्मा का कल नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित थे। तबियत बिगड़ने पर उन्हें आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर परिवार उन्हें आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहा था। रास्ते में उनकी तबियत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे लाल वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे लाल वर्मा का निधन बेहद दुखद है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। तंजानिया से कांगो जा रही एक नाव कल टांगानिका झील में उलट गई। हादसे में करीब 41 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार नाव में लगभग 100 लोग और सामान लदा हुआ था। 49 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं हमें इन अनुभवों से भी सीखना है अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने
0: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The PM said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. Government sources has emphasized that merchant discount rate, MDR, on person-to-merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic custom duty on crude sunflower oil has been slashed to nil. While on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic custom duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jaishankar said the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth heads of government meeting. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary West C.B. George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution in New York on the margins of UNGA. External Affairs Ministry said in a statement that India's approach combines political commitment with practical support. Mr. George also participated in the second G7 Development Ministers meeting organized by the G7 chair, France, on the sidelines of UNGA in New York. Earlier, Mr. George participated in a high-level side co-hosted by Ghana, Germany and France, Reparatory Justice. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu has said that India's relationship with rivers dates back thousands of years, with rivers deeply linked to its cities, culture and traditions. Addressing the inaugural ceremony of the 7th Nadi Utsav in New Delhi, Mr. Sandhu said the rejuvenation of the Yamuna must be both an environmental and cultural mission. Organized by the Indira Gandhi National Center for the Arts, the festival focuses on the Yamuna's history, culture, environment, biodiversity and living heritage. As part of Nadi Utsav, six exhibitions will remain open from 10 a.m. to 7 p.m. till September 30th, offering visitors an opportunity to explore different aspects of the river and its cultural traditions. In the Asian Games 2026, Indian runners have clinched silver in the mixed 4x400m relay race at Nagoya. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000m race after finishing at third spot in 32.50 minutes. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूँ मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे खतों की, और भी बातें करेंगे खतों की, उस जमाने की बातें करेंगे, लेकिन जब इतनी बातें हो चली हैं तो क्यों ना हम थोड़ी बातें मौसम की भी कर लें। जी हाँ, बारिश का जाता हुआ मौसम अपने पीछे बहुत सारी मीठी मीठी यादें छोड़ कर जाता है। बारिश भी हमें बीते जमाने की याद दिलाती है। बचपन में बारिश आती थी तो गली का पानी जो है वो नदी बन जाता था, कागज की नाव बहती थी, और उसे बहते देखना किसी बड़े सफर से कम नहीं लगता था। किसी की नाव सबसे आगे निकलती और किसी की मोड़ पर पलट जाती। हारने का दुख भी बस उतनी ही देर रहता जितनी देर दूसरी नाव बनाने में लगती। आज उम्र ने बहुत कुछ सिखा दिया, मगर उस खेल की एक बात अब भी बहुत खूबसूरत है, चल पड़ने के लिए हमेशा बड़ी नाव की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक साधारण सा कागज भी पूरे बचपन को एक छोटी सी नदी दे देता है। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती, और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है आशा भोसले और किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है बातों बातों में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है चंबल की कसम।

बात हो रही थी खतों की, पुराने जमाने की। तो खतों के जमाने में इंतजार की भी अपनी खूबसूरती थी। जवाब आने में कई कई दिन लग जाते, लेकिन उन दिनों में हर आहट उम्मीद बनकर आती थी। डाकघर से निकला एक लिफाफा कितनी दूरियां पार करता था, किसी शहर से किसी गांव तक, किसी आंगन से किसी मन तक। आज हम पढ़ लिया और देख लिया, कुछ सेकंड में जान लेते हैं। तब एक जवाब के लिए कई दिन दिल थाम कर बैठना पड़ता था। शायद इसलिए उन दिनों के रिश्तों में शब्दों की कीमत ज्यादा महसूस होती थी। एक खत देर से आता, मगर आते ही जैसे पूरा इंतजार सार्थक कर देता था। सुन रहे हैं आप गीत सुहाने। अगला गीत फिल्म का नाम है साजन, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

और एक बार फिर से वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते ही एक प्यारे से गीत के साथ, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है आप आए बहार आए। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा है कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बर्बुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी रही हैं। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वीं नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। नदी उत्सव के तहत 6 प्रदर्शनियां इस महीने की 30 तारीख तक हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शकों के लिए खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज 4था उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होगा। इस 5 दिन के आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये व्यापार मेला 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। भारत पहली बार यूसीआई रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ष 2032 में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए पुणे को मेजबान शहर चुना गया है। यह फैसला महाराष्ट्र और पूरे देश की खेल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी से अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग मानचित्र पर पुणे की पहचान और मजबूत होने की

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में हम बातें कर रहे हैं। आज जो विषय लेकर हम आपके पास आए हैं वो है पुराना जमाना, और खासकर जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं खतों की। जी हाँ, जब खतों की बातें चली हैं तो पाना, लिखना, खत भेजना, इन सारी बातों में एक और बात आती है कि खत लिखने वालों के लिए ये भी किसी धुन से कम नहीं थे जो बैठकर खत लिखा करते थे। पहले सोचा जाता था कि क्या लिखना है, फिर शब्द चुने जाते थे, और फिर पन्ने पर एक एक बात बड़ी कारीगरी के साथ उतारी जाती थी। गलती हो जाए तो पूरा पन्ना बदलना पड़ता था, इसलिए लिखे हुए शब्दों में एक ठहराव, एक सावधानी होती थी। शायद इसी कारण पुराने खत

पढ़ते हुए हमें सिर्फ लिखा हुआ नहीं, लिखने वाले का मन भी महसूस होता था। हर अक्षर में उसका समय लगा था, हर पंक्ति में उसका इंतजार। यही तो खतों की असली खूबसूरती थी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आज रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। आज हमने बहुत ढेर सारी बात की, बीते हुए जमाने की, खतों की, बारिश की, पर कुछ बातें खतों की अब भी रहती हैं। ये वो जमाना था जिसकी जितनी बातें करें बातें निकलती चली आती हैं। पुराने घरों के संदूक में कपड़ों के साथ कुछ खत भी बड़े जतन से रखे जाते थे। कागज पीला पड़ चुका होता था, स्याही भी कहीं कहीं हल्की हो जाती, मगर पढ़ने वाले की आंखों में वही कहानी आज भी साफ साफ दिखाई दे रही होती। हर खत किसी बीते हुए रिश्ते का प्रमाण नहीं, हर बीता हुआ समय किसी की धरोहर होता था। उसे खोलते ही कई आवाजें लौटकर आसपास आ जाती थी, मां की, पिता की, किसी भाई की, किसी प्रिय की। आज शायद हम संदेश डिजिटल दुनिया में सुरक्षित करके रख भी लेते हैं, लेकिन पुराने खतों की तरह उन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। कागज सचमुच यादों को एक आकार दे देता था, जिन्हें देखकर, जिन्हें छूकर, जिन्हें पढ़कर हम न जाने कहां से कहां पहुंच जाते। एक गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति, एक गांव के एक छोटे से घर में बैठी हुई नई नवेली दूर अपने पिया के पास परदेश में खतों के माध्यम से पहुंच जाती, और पिया की जो वो भावनाएं थी वो नवेली के पास खतों में सिमट कर पहुंच जाती। कितना सुंदर होता था वो दौर, जिस दौर को हम जाने कहां पीछे छोड़ आए हैं। सुन रहे हैं आप रात सुरमई, और अगला गीत सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अर्पण।

0: उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो, सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है। फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी मैं?

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो फिर मिलने के वादे के साथ ही हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो मुझे दीजिए अनुमति, छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजना

0: महिलाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज 4th उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों के सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी इसमें हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान चर्चा सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य मंथन में देश के डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए कई पहलों का शुभारंभ भी किया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रजिस्ट्री, मोबाइल ऐप और अन्य शामिल हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से युवाओं को अपने समुदायों में मौजूद समस्याओं की पहचान करने का अवसर मिलेगा। इसमें 5 राष्ट्रीय विषय स्वच्छ और सतत भारत, समृद्ध किसान, समृद्ध भारत, स्वस्थ और समावेशी भारत, शिक्षित और कुशल भारत तथा सुरक्षित भारत शामिल होंगे। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पुणे नगर निगम ने पर्यावरण अनुकूल विसर्जन के लिए 35 घाट, 69 कृत्रिम कुंड और 648 लोहे के कुंड तैयार किए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विसर्जन में सहयोग करने की अपील की है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले UPI लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी MDR कोई उपकर या अधिकार नहीं है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
2: संभावना है।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं हमें इन अनुभवों से भी सीखना है अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने
3: Mr. Modi said, everyone must rigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The PM said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. Government sources has emphasized that merchant discount rate on person-to-merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stands within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. Union Minister for Health and Family Welfare, J.P. Nadda, will commemorate 8 years of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and 5 years of the Ayushman Bharat Digital Mission at Arogya Manthan 2026 in New Delhi today. The program will feature a series of thematic deliberations focusing on key aspects of health assurance and digital health. The Ministry of Health and Family Welfare has said Arogya Manthan 2026 will also witness the launch of a number of initiatives aimed at further strengthening India's digital health and health assurance ecosystem. Education Minister Prahlad Joshi will inaugurate the Seva First Innovation Challenge in Bengaluru today. The Education Ministry said the initiative will encourage young people to identify problems they see in their communities and develop solutions that can be tested, improved and taken towards implementation. The challenge will bring together young participants from schools, industrial training institutes, polytechnics, colleges and universities. The government has reduced the basic customs duty on major imported edible oils to help moderate domestic prices and ease inflationary pressures caused by a rise in global edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said the duty on crude sunflower oil has been reduced to nil, while that on crude soybean and palm oil has been cut from 10% to 5%. The government has also reduced the duty on refined edible oils while maintaining a 19.25% duty difference between crude and refined edible oils. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar held a meeting with PM of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jayashankar said the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state resolution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary West C.V. George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution in New York on the margins of UNGA. External Affairs Ministry said in a statement that India's approach combines political commitment with practical support. Heavy to very heavy rain continues in several parts of Odisha under the influence of a deep depression over north, coastal Andhra Pradesh and adjoining South Odisha. The system has triggered waterlogging, road disruptions and a flood-like situation in vulnerable areas, while the state government has intensified relief and evacuation measures. In the Asian Games 2026, Indian runners have clinched silver in the mixed 4x400m relay race at Nagoya. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000m race after finishing at third spot in 32.50 minutes. The achievement marks India's first medal in the women's 10,000m event at the Asian Games in 16 years. Earlier, in shooting, Ananjit Singh Naruka and Parinaz Dhaliwal also bagged bronze in the mixed skeet team event, the first ever medal for India in this category. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 5 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और रात की इस तन्हाई में कभी कभी जिंदगी की भागती दौड़ती राहों में कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जिसकी मौजूदगी भर से दिल को सुकून मिलने लगता है, जैसे किसी तपती दोपहर में ठंडी हवा का झोंका, जैसे किसी खामोश शाम में दूर से आती हुई कोई मीठी सदाएं, और जैसे किसी अधूरी दास्तान को अचानक उसका सबसे खूबसूरत लफ्ज मिल जाए। कहते हैं मोहब्बत सिर्फ किसी का साथ पाना नहीं बल्कि उसके आने से अपनी दुनिया को रोशन होते देखना भी है। आज का ये नगमा भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसी ही कैफियत अपने अंदर समेटे हुए हैं। एक ऐसा गीत जिसमें मिलन की खुशी है, दिल की नरमी और रिश्तों की वो गहराई है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। गुलजार साहब के खूबसूरत अल्फाज और आरडी बर्मन साहब के दिल को छू लेने वाले ये संगीत और लता मंगेशकर जी किशोर कुमार साहब की आवाज, तो फिर ये दुनिया ही बिल्कुल अलग सी लगने लगती है। फिल्म आंधी का ये बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमा आपके लिए हमराही के इस महफिल के आगाज में।

नूर आ गया है। हर इंसान की जिंदगी में कोई एक शख्स ऐसा होता है जिसके आने की खुशियां इतनी खूबसूरत होती है कि पूरी जिंदगी उसी एहसास के साए में गुजार देने की कोशिश करता है। कहते हैं दिल की किताब का पहला पन्ना हमेशा कोरा होता है, ना कोई कहानी ना कोई अफसाना, बस कुछ अनकहे ख्वाब और अनजाने एहसास। फिर जिंदगी में कोई आता है और उसकी एक मुस्कुराहट, एक नजर, एक मुलाकात उस कोरे कागज पर मोहब्बत की पहली इबारत लिख देती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए बड़े बड़े वादों की जरूरत नहीं पड़ती, बस किसी का साथ, उसकी आवाज और उसके होने का एहसास दिल को मुकम्मल कर देता है। आज का अगला ये नगमा भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा गीत जिसमें इश्क की मासूमियत है, जज्बात की रवानी है और प्यार के रंगों से सजे एक दिल की कहानी है। फिल्म आराधना का ये सदाबहार गीत आनंद बख्शी साहब के अल्फाज, एस डी बर्मन का बेहद खूबसूरत संगीत और किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों का जादू जो आज भी दिल के किसी खामोश कोने को छू जाते हैं और फिर ऐसे अल्फाज निकलने लगते हैं। आज अपने दिल के उस कोरे कागज को कुछ हसीन यादों के हवाले करते हैं हम और आप मिलकर, शायद कोई पुरानी मोहब्बत याद आ जाए, शायद कोई भूला हुआ चेहरा मुस्कुरा उठे, या शायद किसी खास शख्स की कमी से ये महसूस हो जाए। कि कोई था हमारी जिंदगी में जिस नगमे के जरिए लौट कर आ गया है।

0: क्या हुआ?
1: अगर मालूम होता कि तुम शराब पीकर इस तरह बहक जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती।
0: अरे विनू, तुम खाम का घबरा रही हो, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। देखो डार्लिंग, मेरे पास आओ।
1: छोड़ दो मुझे, तुम नशे में हो।
0: डार्लिंग डार्लिंग, नशा शराब का नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारी आंखों का।
1: मत छुओ मुझे।
0: अरे विनू मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो विनू मेरी बात तो सुनो। विनू रुक जाओ, अरे वापिस आ जाओ।

0: तुम्हें मेरी कसम, मेरे प्यार की कसम, वापस आ जाओ वरना वरना मैं यहां से कूद पड़ूंगी।
1: कूद पड़ो।
2: बड़े अफसोस की बात है, तुमने मुझे इतना खराब समझा, चाय के पानी को शराब समझा। अरे पी के देखो पानी है, ये तुम्हारी टीकाराम का आइडिया।
0: कुछ भी हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी तो जान निकल गई थी।
2: ए, मेरी जान तो तुम हो, तुम समझती हो मैं उसे इतनी जल्दी निकलने देता।
0: अभी तक मेरी सांस तेज चल रही है, आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करना।
2: नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये मजाक ना करता तो ये रूप देखने को कहां से मिलता, और वो गुस्से का रूप जिसकी लाली और सुबह की हर कड़ी खिल उठती है।
3: तो दोस्तों ये था ये एक ऐसा नगमा जिसने मोहब्बत के कोरे कागज पर यादों के रंग भर दिए। जिंदगी में चाहे कितने भी मसरूफियात क्यों ना हो, कभी कभी ठहर कर उन एहसासात को याद कर लेना चाहिए जिन्होंने हमें मुस्कुराना सिखाया। आपकी शाम, आपकी रात और आपकी हर सुबह संगीत से महकती रहे, इसी दुआ के साथ अब आगे बढ़ते हैं अगले खूबसूरत नगमे की तरफ। बने रहिए, क्योंकि आपकी फरमाइशें, आपका प्यार और आपकी मोहब्बत ही हमारे इस रेडियो सफर की असली रौनक है। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए। उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com fmgold@gmail.com। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गीत और संगीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को यूं ही आगे बढ़ाएंगे बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ। फिलहाल ये पैगाम आपके लिए।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:30 और 42 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की और मैं हूं आपका हमराही आपके साथ। रात की खामोशी में कुछ नगमे और भी खूबसूरत लगते हैं, और जब बात हो मोहब्बत के उन इशारों की जिन्हें सिर्फ दिल समझता है तो

गीत अपने आप में एक हसीन अफसाना बन जाता है। किसी की आंखों में छुपी शरारत, किसी की मुस्कान में बसी नजाकत और किसी के करीब होने का वो एहसास जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाता है। कभी किसी ने आपको सिर्फ एक नजर से इतना कुछ कह दिया है कि जवाब में आपके पास कोई लफ्ज ही नहीं बचा। अगर हाँ तो शायद आप भी जानते हैं कि इश्क की सबसे खूबसूरत गुफ्तगू अक्सर खामोशी में होती है। तो आइए इसी एहसास को एक बार फिर जीते हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। फिल्म कश्मीर की कली का ये सदाबहार नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कभी किसी की आंखों में छुपा सवाल पढ़ा है आपने? कभी किसी ने मुस्कुरा कर यूं पूछा हो कि दिल में कौन बसा है, और आप जवाब देने के बजाय बस नजरें झुका ले हैं? मोहब्बत की दुनिया भी बड़ी अजीब है दोस्तों। यहां कभी एक सवाल में पूरी दास्तान छुपी होती है, और कभी एक मुस्कान में इकरार होता है, और कभी किसी की छेड़छाड़ भरी बात दिल की धड़कनों को बेकरार कर देती है। अगला ये नगमा भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे ही चुलबुली मोहब्बत, मीठी नोक झोंक और दिलकश सवालों से सजा हुआ ये नगमा, एक ऐसा गीत जिसमें प्यार की मासूमियत है, गांवों की मिट्टी की खुशबू है, और रिश्तों की वो अपनापन भरी मिठास जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आए। आनंद बख्शी साहब के खूबसूरत अल्फाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का बेहद खूबसूरत सुरीला संगीत, और मुकेश जी और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों का ये जादू, मिलन फिल्म का यह सदाबहार नगमा हमें याद दिलाता है कि इश्क में सवाल भी कितने हसीन हो सकते हैं, और जवाब का इंतजार भी कितना दिलकश। तो दोस्तों, जरा अपनी फिक्रों को किनारे रखिए, दिल में थोड़ी सी शरारत जगाइए, और याद कीजिए वो लम्हे जब किसी खास शख्स का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर वो बेहद खूबसूरत मुस्कान आ जाया करती थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। मैं फिर से जी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही में मैं ये बेहद खूबसूरत नगमों को लेकर हाजिर हूँ आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। आप तमाम लोगों के बेहद खूबसूरत पैगाम हम तक पहुँच रहे हैं, कोशिश करेंगे उन्हें भी हम शामिल करें, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले नगमे की तरफ। दोस्तों कहते हैं इश्क भी कितना अजीब है ना, कभी दिल को सुकून देता है, कभी चेहरे पर मुस्कान लाता है, और कभी किसी की एक नज़र, एक अदा, एक प्यारी सी बात हमें इस कदर बेकरार कर देती है कि दिल बस उसी के ख्यालों में खोया रहता है। कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपकी जिंदगी में यूं दाखिल हो जाए जैसे कोई मीठी धुन खामोश शाम में उतरती चली जाती है, उसकी आवाज सुनते ही दिल खिल उठते हैं, उसकी मुस्कान देखते ही वक्त थम सा जाता है, और उसके साथ बिताया हुआ हर लम्हा एक हसीन याद बन जाती है। फिर दिल कहता है हुजूर ये मोहब्बत है या कोई जादू। अगला यह नगमा भी कुछ ऐसी ही शरारत वाला है, कुछ ऐसा ही बेकरारी, ऐसी ही बेकरारी और ढेर सारी मोहब्बत से सजा ये बेहद खूबसूरत नगमा मजरू सुल्तानपुरी साहब के दिलकश अल्फाज और आरडी बर्मन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत, किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों का वो जादू जो सुनते ही दिल में इश्क की हल्की सी लहर दौड़ा दे। फिल्म मेरे जीवन साथी का ये खूबसूरत नगमा जिसमें मोहब्बत की शरारत भी है, इकरार की मिठास भी है, और किसी खास शख्स के लिए दिल की वो बेकरारी भी जिसे छुपाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।

दिल को थोड़ा सा और मचलने दीजिए और उस खूबसूरत एहसास में खो जाइए जहाँ कोई आपको इतना प्यार इतना प्यारा लगने लगे कि शिकायत भी मोहब्बत जैसे महसूस हो जाए।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये था मोहब्बत की शरारत और दिल की बेकरारी से सजा बेहद खूबसूरत नगमा। कभी कभी किसी गीत में हमें अपनी ही कहानी सुनाई देने लगती है, किसी की याद, किसी की मुस्कान या किसी के साथ बिताया हुआ वो खूबसूरत लम्हा जिसे हम आज भी दिल में सजो कर रखते हैं, वो तमाम चीजें याद आने लगती है ऐसे नगमों को सुनने के बाद। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हम ऐसे ही बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हाजिर हैं हमराही के इस दिलकश महफिल में। बहुत सारे पैगाम हम तक पहुंचे हैं, जिनमें फहीम साहब ने एक पैगाम भेजा है जम्मू से, किशन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है लेकिन दिल की गहराइयों से अपना प्यार भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ कुंवर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर कुंवर सिंह ये पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है और आप हमें सुनते हैं, आपको पसंद आता है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हम कोशिश करते हैं कि आपके दिल के करीब जो नगमे हैं उन्हें ही हम आपके लिए लेकर आएँ ताकि आप उसे और पसंद करें और बेहद मोहब्बत के साथ हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आगे बढ़ते हैं एक और बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। दोस्तों, कहते हैं संगीत की कोई जबान नहीं होती, वो दिल से निकलता है और सीधे दिल तक पहुंच जाता है। कभी किसी धुन पर पांव खुद ब खुद थिरकने लगते हैं, कभी कोई ताल हमारी हथेलियों को ताली बजाने पर मजबूर कर देती है, और कभी कोई गीत ऐसा होता है जिसमें मोहब्बत भी होती है, मस्ती भी होती है और जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज भी। अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है, इसे सुनकर आप यकीनन जरूर गुनगुनाएंगे भी और झूमने भी लगेंगे। एक ऐसी धुन जिसमें लोक संगीत की मिठास है, इश्क की शरारत है और दिल को झूमने पर मजबूर कर देने वाली बेहद खूबसूरत आवाजें हैं। एक महफिल हो, चारों तरफ मुस्कुराते चेहरे हो, ऐसा सोचें आप, और साथ ही साथ किसी की आंखों में प्यार हो, किसी की बातों में

इकट्ठपन हो और फिर बज उठे ये बेहद खूबसूरत नगमा जो आपके दिल में उतर जाए। तो मत पूछिए मौसम क्या होगा, समय क्या होगा और अंदाज क्या होगा।

0: सरगम फिल्म के इस नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए हमराही से इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा ठीक 4:10 पर लेकर अगला प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा साथ यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी, और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है, और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज 4th उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य मंथन में देश के डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए कई पहलों का शुभारंभ भी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से युवाओं को अपने समुदायों में मौजूद समस्याओं की पहचान करने का अवसर मिलेगा। इसमें 5 राष्ट्रीय विषय, स्वच्छ और सतत भारत, समृद्ध किसान, समृद्ध भारत, स्वस्थ और समावेशी भारत, शिक्षित और कुशल भारत तथा सुरक्षित भारत शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बर्बुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पुणे नगर निगम ने पर्यावरण अनुकूल विसर्जन के लिए 35 घाट, 69 कृत्रिम कुंड और 648 लोहे के कुंड तैयार किए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विसर्जन में सहयोग करने की अपील की है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
3: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The PM said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with PM of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jaishankar said the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. Union Minister for Health and Family Welfare J.P. Nadda will commemorate 8 years of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and 5 years of the Ayushman Bharat Digital Mission at Arogya Manthan 2026 in New Delhi today. The program will feature a series of thematic deliberations focusing on key aspects of health assurance and digital health. The Ministry of Health and Family Welfare has said Arogya Manthan 2026 will also witness the launch of a number of initiatives aimed at further strengthening India's digital health and health assurance ecosystem. Education Minister Pralhad Joshi will inaugurate the Seva First Innovation Challenge in Bengaluru today. The Education Ministry said the initiative will encourage young people to identify problems they see in their communities and develop solutions that can be tested, improved and taken towards implementation. The challenge will bring together young participants from schools, industrial training institutes, polytechnics, colleges and universities. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary West C.B. George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution in New York on the margins of UNGA. External Affairs Ministry said in a statement that India's approach combines political commitment with practical support. Government sources has emphasized that merchant discount rate on person-to-merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. The government has reduced the basic customs duty on major imported edible oils to help moderate domestic prices and ease inflationary pressures caused by a rise in global edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said the duty on crude sunflower oil has been reduced to nil, while that on crude soybean and palm oil has been cut from 10% to 5%. The government has also reduced the duty on refined edible oils while maintaining a 19.25% duty difference between crude and refined edible oils. Heavy to very heavy rain continues in several parts of Odisha under the influence of a deep depression over north coastal Andhra Pradesh and adjoining South Odisha. The system has triggered waterlogging, road disruptions, and a flood-like situation in vulnerable areas, while the state government has intensified relief and evacuation measures. In the Asian Games 2026, Indian runners have clinched silver in the mixed 4x400m relay race at Nagoya. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000m race after finishing a third spot in 32.50 minutes. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 6 सेकंड। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज, लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं उन तमाम बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हाजिर हूं जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देता है और हमें एक नई सोच के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों कहते हैं जिंदगी में अगर कोई सच्चा हम सफर मिल जाए तो छोटी सी दुनिया भी पूरी कायनात जैसे लगने लगती है। और जब साथ में मोहब्बत हो, भरोसा हो और दिल से निकली हुई एक प्यारी सी दुआ हो तो फिर और क्या चाहिए। आज का यह नगमा भी कुछ ऐसा ही है जिसे आज के इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। ये बेहद खूबसूरत नगमा कैफियत बयान करता है आपके दिल की, आपके जज्बात की। जहाँ किसी महबूब का साथ मिलना, कोई अपना हो जाना जैसे पूरी दुनिया मिल जाने के बराबर है। फिल्म नया दौर का ये बेहद खूबसूरत नगमा जिसे अपनी पुरकशिश आवाज में मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले ने सजाया है। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार ओपी नैयर साहब के बेहद खूबसूरत संगीत से सजा ये नगमा जो आपके दिल के बेहद करीब है। तो जरा दिल को सुकून दीजिए, आराम दीजिए, चेहरे पर मुस्कान लाइए और महसूस कीजिए वो खूबसूरत एहसास जिसे आप दिल की गहराइयों से चाहते हैं और आप पसंद करते हैं। आपका अपना ये पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे से आज के सफर का आगाज करते हैं।

मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में नगमा था फिल्म नया दौर से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त जुड़े हैं आप अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। जिंदगी एक ऐसा सफर जिसमें हर मोड़ अपने साथ एक नया एहसास लेकर आता है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी थोड़ी मुश्किल, कभी कोई अपना साथ चलता है तो कभी कुछ खूबसूरत यादें ही हम सफर बन जाती हैं। लेकिन किसी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि हर गुजरता हुआ पल हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए जो बीत गया उसे शिकवा बनाकर नहीं, याद बनाकर रखिए, और जो आज आपके पास है उसे पूरे दिल से सजा लीजिए। क्योंकि जनाब वक्त की अपनी रवानी है, ये ठहरता ही नहीं, बस आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो क्यों ना इस सफर में हम भी हर पल को मुस्कुराकर सलाम करें और आने वाले कल के लिए दिल में थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी रोशनी और ढेर सारा प्यार रखें। इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ, इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ आगे बढ़ते हैं एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में फिल्म आपकी कसम का ये बहुत ही प्यारा नगमा, जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और संगीत है आर डी बर्मन साहब का। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर ये जिंदगी के फलसफे को बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है ये नगमा।

जी हाँ, जिंदगी के सफर में जो मकाम गुजर जाते हैं वो शायद फिर लौट कर कभी नहीं आते। लेकिन कभी कभी जिंदगी में कोई शख्स हमसे दूर हो जाता है, मगर उसकी यादें दिल से कभी दूर नहीं होती। वो भले ही हमसे कुछ सो दूर चला गया हो, हमेशा के लिए भी चला गया हो, लेकिन उसकी यादें हमारे इर्द गिर्द हमारे दिल में बसी रहती हैं। और शायद यही मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात है। फासले बढ़ सकते हैं, मगर सच्ची भावनाओं की रोशनी कभी कम नहीं हो सकती। इंतजार हमेशा सिर्फ किसी के लौटने का नहीं होता, कभी कभी इंतजार होता है उस एक खुशखबरी का, उस एक मुस्कान का, या उस पल का जब जिंदगी फिर से कोई हसीन मोड़ ले ले। तो अगर आपके दिल में भी किसी के लिए कोई उम्मीद, कोई दुआ

भूलिए, पुरानी यादों को मुस्कुराकर याद कीजिए और सुनिए मोहब्बत, इंतजार और उम्मीद से सजाइए बेहद खूबसूरत गीत। ये बेहद खूबसूरत कलाम किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कुछ इंतजार हमें कमजोर नहीं बल्कि हमारी मोहब्बत और उम्मीद की गहराई से रूबरू कराते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ। स्वागत करता हूँ अरुणिमा के इस दिलकश महफिल में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:37 और 38 सेकेंड। महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। रात के इस तन्हाई में प्यार मोहब्बत के साथ साथ जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, जिंदगी में आने वाले मुश्किलात और उससे किस तरीके से डटकर मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़े, जब कोई साथी आपका साथ हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है, इन तमाम मौजूदात पर हम और आप बातें भी कर रहे हैं और मिलकर इस सफर को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम हमें जरूर बताइएगा अपने पैगामात के जरिए, और आप अपने पैगामात हमें ईमेल्स के जरिए भेज सकते हैं, और ईमेल के जरिए हमारा पैगामात पहुंचाने के लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आप हमें इस पर मेल कर सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। तो आप अपने पैगामात हम तक पहुंचाएं, तब तक हम आपके लिए जो बेहद खूबसूरत चुनिंदा नगमों के साथ हाजिर हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें किसी नाम या पहचान की जरूरत नहीं होती, बस एक दूसरे पर एतबार हो तो रिश्ता खुद ब खुद खूबसूरत बन जाता है। कहा यह भी जाता है कि वादे शब्दों से नहीं उन्हें निभाने से खूबसूरत बनते हैं। मुश्किल वक्त में किसी का हाथ थामे रखना, खुशियों में दिल खोलकर साथ मुस्कराना और हर हाल में अपने रिश्तों की कदर करना, यही तो सच्ची मोहब्बत है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अगर हम किसी को एक चीज दे सकते हैं तो वो है भरोसा, क्योंकि भरोसा वो दौलत है जो रिश्ते को वक्त के साथ और भी मजबूत बनाते हैं। तो आज जरा उन लोगों को याद कीजिए जिनसे आपने कभी कोई वादा किया था, और अगर मुमकिन हो तो उस वादे को फिर से दिल में ताजा कीजिए। आखिर रिश्तों की असली खूबसूरती तो साथ होने में ही है ना, साथ निभाने में ही है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम आगे बढ़ेंगे अरुणिमा के इस बेहद खूबसूरत महफिल में, और इसी खूबसूरत एहसास को अपनी आवाज में पिरो रहे हैं किशोर कुमार साहब और लता जी फिल्म कसम वादे के इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ, जिसे लिखा है गुलशन बाहरा ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा है हम सब के प्यारे RD बर्मन साहब।

कसमें वादे निभाएंगे हम, जिंदगी की ये बेहद खूबसूरत चीजें हैं जो भरोसे वादों पर चलती है और उसे निभाने वाला ही सच्चा इंसान होता है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। दोस्तों, कई बार हमें लगता है जिंदगी कितनी अजीब है, लगता है ना, आपको भी लगता होगा। और कई बार हमें ये लगता है कि ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है, बेशुमार मोहब्बत, बेशुमार प्यार। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन देखते ही देखते पल, दिन और साल यादों का हिस्सा बन जाते हैं। शायद इसीलिए जिंदगी हमें हर रोज एक छोटा सा पैगाम देती है, जो पल आज आपके पास है उसे पूरे दिल से जी लीजिए। क्या पता ये कल फिर हो या ना हो। नाम, शोहरत, दौलत, कामयाबी अपनी जगह, लेकिन इंसान की असली पहचान इस बात से होती है कि उसने अपनी मौजूदगी से कितने दिलों में खुशियां बांटी, मोहब्बत और उम्मीदें छोड़ी उसके दिल में। तो आने वाले कल की फिक्र में आज को मत खोइए, मुस्कुराइए।

खुश रहिए और आगे बढ़िए। किसी अपने से दो मीठे बोल बोल दीजिए, किसी चेहरे पर मुस्कान ले आइए और अपनी छोटी सी खुशी को भी पूरे एहसास के साथ महसूस कीजिए, क्योंकि वक्त का सफर चलता रहता है, लेकिन हमारे अच्छे लम्हे, हमारी बातें और हमारी यादें किसी न किसी के दिल में ठहर जाती हैं। इसी बेहद खूबसूरत फलसफे को अल्फाज दी है साहिर लुधियानवी साहब ने, आवाज दी हम सब के प्यारे मुकेश ने और संगीत से सजाया खयाम साहब ने, और ये नगमा है 1976 में आई फिल्म कभी कभी से। मैं पल दो पल का शायर हूँ, और आज की छोटी सी बात याद रखिए, जिंदगी कितनी लंबी है ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हर पल को कितना खूबसूरत बनाना है ये जरूर हमारे हाथ में है। तो मुस्कुराते रहिए, मोहब्बत बांटते रहिए और अपने हर आने वाले पल का खैर मकदम कीजिए, इस्तकबाल कीजिए और जिंदगी को हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए इस नगमे की तरह।

मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुकेश साहब की बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली आवाज़ यकीनन हम सबके जहन में कहीं ना कहीं हमेशा के लिए बस गई है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल है अरुणिमा की, और अब तमाम लोगों के पैगाम हम तक पहुंच रहे हैं, उन्हें भी हम शामिल करेंगे लेकिन इस अगले नगमे के बाद। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा पल आता है जो बहुत साधारण होते हुए भी दिल में एक खास जगह बना लेता है। किसी अपने को देखना, उसकी मुस्कुराहट महसूस करना और अचानक दिल में एक खूबसूरत सा ख्याल आ जाना, शायद जिंदगी की असली खूबसूरती भी इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में छुपी है। हम बड़ी खुशियों की तलाश में अक्सर उन छोटी नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हर रोज़ हमारे आसपास होती हैं। एक प्यारी मुस्कान, किसी अपने की आवाज़, साथ बैठकर की गई छोटी छोटी सी बातें। तो आज ज़रा ठहरिए, अपने आसपास के लोगों को महसूस कीजिए और उन रिश्तों के लिए शुक्रगुजार रहिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए जो आपकी ज़िंदगी को मायने देते हैं। क्योंकि खुशी हमेशा किसी बड़ी मंजिल पर नहीं मिलती, कभी कभी वो रास्ते में ही मिल जाती हैं, किसी की आंखों में, किसी की बातों में और किसी खूबसूरत मुलाकात में। और ऐसे ही एहसासात हर रोज़ हम कहीं ना कहीं ज़रूर देखते हैं, महसूस करते हैं। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है, नगमा कह ले या कलाम कह ले, जो आज के लिए बेहद खूबसूरत है। जगजीत सिंह साहब और चित्रा जी की बहुत ही प्यारी आवाज में, जिसे लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और संगीत है कुलदीप सिंह साहब का। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू होगी। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित यह प्रदर्शनी 29 सितम्बर तक चलेगी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शक, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस बार ऑस्ट्रिया, जापान, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम साझेदार देश हैं। करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेंगी। आयोजन के दौरान चर्चा सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 5 दक्षिणी राज्यों और 3 केंद्र

0: शासित प्रदेशों के युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रतियोगिता का राष्ट्रीय फाइनल दिसंबर में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका सुदृढ़ करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। श्री जॉर्ज ने सत्र को संबोधित करते हुए विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया। ये सत्र विकास के अधिकार संबंधी घोषणा की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। इटली की सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाने को स्वीकृति दे दी है। सरकार ने यह भी तय किया है कि किसी एक कक्षा में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 30% से अधिक नहीं होगी जिन्हें इतालवी भाषा का बहुत कम ज्ञान है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि नियमों का उद्देश्य बच्चों को समाज में बेहतर तरीके से जोड़ना है। हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उन सब विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: मिस्टर मोदी सेड एवरीवन मस्ट विगरसली एडवांस द पिवोटल रोल ऑफ द यूथ इन बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। द पीएम सेड वी आर पीपल डेडिकेटेड टू नेशन बिल्डिंग एंड सेट आउट विद द रिजॉल्व टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया। Government sources has emphasized that merchant discount rate MDR on person to merchant UPI transaction above 2000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. Union Minister for Health and Family Welfare J.P. Nadda will commemorate 8 years of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and 5 years of the Ayushman Bharat Digital Mission at Arogya Manthan 2026

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। नई सुबह नई उम्मीदें और एक नया दिन यानी जिंदगी ने हमें फिर एक बार बेहतरीन शुरुआत का मौका दिया है। हर सुबह अपने साथ एक पैगाम लेकर आती है, कल चाहे कितना भी मुश्किल रहा हो आज की सुबह नई है और नई सुबह में हम नए नजरिए के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जो रास्ते कल बंद नजर आ रहे थे हो सकता है आज उनमें कोई नया रास्ता दिखाई दे। बस जरूरत है थोड़े से हौसले, थोड़े से सब्र और एक खूबसूरत सी उम्मीद की। और जब राह मुश्किल लगे तो दिल से एक दुआ निकलती है, ऐ खुदा मुश्किलों को आसान कर दे, ऐ ईश्वर हमारे राह को आसान कर दे, हमारे इरादे को मजबूत कर दे और हमारे कदमों को सही रास्ता दिखा दे। और हम जो भी काम शुरू करते हैं उसे खुदा उसे ईश्वर के नाम से करते हैं और इसीलिए तो हम हर दिन का आगाज उसके नाम से करते हैं। लेकिन याद रखें दुआ के साथ साथ कोशिश भी जरूरी है, क्योंकि मंजिल सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं मिलती, उसकी तरफ उठाया गया हर छोटा कदम हमें मंजिल की तरफ लेकर जाता है, मंजिल के करीब लेकर जाता है। तो आज इस नई सुबह का एक हम भी वादा खुद से करें, जो मेरे बस में है मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा और जो मेरे बस में नहीं है उसे फिक्र नहीं दुआ के हवाले कर दूंगा। और इसी खूबसूरत उम्मीद और इल्तिजा के साथ आज के सफर का आगाज करेंगे मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में ये नगमा, मुश्किलें आसान कर दे ऐ खुदा।
1: मुश्किलें
0: पैगाम फिल्म का ये नगमा है जो हम सबके दिल के बेहद करीब है।

मुश्किलें आसान कर दे ऐ खुदा। इसी उम्मीद के साथ हम हर दिन का आगाज करते हैं। हम हर काम उसी खुदा उसी ईश्वर के नाम से करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है भोर सुहानी की। और इस नई सुबह में मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों जरा सोचिए, अगर जिंदगी एक सफर है तो समय उसका सबसे खामोश हम सफर है। शायद आप भी ऐसा ही मानेंगे। वो न रुकता है न पीछे लौटता है, बस हमें हर दिन कुछ नया सिखाता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। कभी समय के दर्पण में हमें अपनी पुरानी यादें दिखाई देती हैं, कुछ खुशियां, कुछ शिकवे, कुछ अधूरे ख्वाब।